अभी आप सुन रहे थे जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, ताजमहल है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं, गीत का बोल है अभी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे आ रे आ रे आ रे।

अभी आप सुन रहे थे अभी ना जा मेरे साथी दिल पुकारे आरे आरे आरे, पांव छू लेने दो फूलों को इनायत होगी, लता जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी ताजमहल।

लता जी के साथ में मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी ताजमहल से आप सुन रहे थे पाँव छू लेने दो फूलों को इनायत होगी। जिंदगी में हमेशा उस इंसान की कदर करो, जिंदगी में हमेशा उस इंसान की कदर करो जो अच्छे वक्त में आपकी खुशी में शामिल रहे और बुरे वक्त में आपका साथ दे। सुराहीदार गर्दन कोयल सी है आवाज फ्रॉम द मूवी अमन से हम पेश करते हैं और आपको सुनाने वाले हैं मोहम्मद रफी जी।

0: टू एंजॉय एवर।
1: अभी आप सुन रहे थे सुराही दार गर्दन, कोयल सी है आवाज, तेरी हर एक बात पे मुझको है बड़ा नास। फ्रॉम द मूवी अमन से हमने पेश किए हैं, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। पुजारिन है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं मेरा प्रेम हिमालय से ऊंचा, सागर से गहरा प्यार मेरा।

नमाईती मुकेश जी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी पुजारिन से हमने पेश किए हैं मेरा प्रेम हिमालय से ऊंचा सागर से गहरा प्यार मेरा। गुजर जाती है ये खूबसूरत लम्हे यूं मुसाफिरों की तरह, गुजर जाती है ये खूबसूरत लम्हे यूं मुसाफिरों की तरह, यादें वही खड़ी रह जाती हैं रुके रस्तों की तरह। फ्रॉम द मूवी अपने हुए पर आए इसी फिल्म से हम पेश करते हैं मैंने बुलाया और तुम आए। लता जी आपको सुनाने वाले हैं।

जय किशन जी, दिल लगाकर हम ये समझे जिंदगी क्या चीज है। फ्रॉम द मूवी जिंदगी और मौत से हम पेश करते हैं, महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे दिल लगाकर हम ये समझे जिंदगी क्या चीज है, फ्रॉम द मूवी जिंदगी और मौत से हमने पेश किए हैं। महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले थे। एक गलत बात

और एक अधूरी बात, एक गलत बात और एक अधूरी बात न जाने कितने ही रिश्ते तोड़ देती हैं। जिंदगी है क्या, सुन मेरी जा, प्यार भरा दिल मीठी जुबां। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी माया से आप सुनेंगे, और म्यूजिक ये है सलील चौधरी ने।

फ्रॉम द मूवी माया से हमने पेश किए है जिंदगी है क्या सुन मेरी जा प्यार भरा दिल मीठी जुबा। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। वक्त है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले हैं, लेकिन ये गीत पेश करने से पहले एक बात बोलूं, भरोसा उस पर करो तो तुम्हारी तीन बातें पहचान सके, भरोसा उस पर करो तो तुम्हारी तीन बातों पहचान सके, मुस्कुराहट के पीछे दुख, गुस्से के पीछे प्यार, चुप रहने के पीछे वजह।

अभी आप सुन रहे थे हम जिप्सी मिट के आपकी बाहों में आ गए फ्रॉम द मूवी वक्त से हमने पेश किए हैं आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले थे। जिंदगी में एक चीज़ तो कभी डिलीट नहीं होती, जिंदगी में एक चीज़ तो कभी डिलीट नहीं होती और वो है किसी की यादें। ये वादियाँ ये फिजाएँ बुला रही है तुम्हें, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी आज और कल।

0: करते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे।

हरिओम एक ही दम भैया बीरबल के स्टाइल में कैसे रह लो आप लोग। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज का दुनिया के दोस्तों स्वीकार कीजिए हम लोगों का सागर सा भरा हुआ प्यार नमस्कार और साथ ही साथ कबूल हो फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मोहब्बत से भरी हुई सलाम को और आप सभी को सत श्री अकाल हरिओम हरि बोल। मैं हूं आप लोगों का सेवक खिदमतगार सुरेंद्र कृष्णदत्त भगवान दीन जिसे आप ढेर सारे श्रोतागणों आकाशवाणी के दोस्त भैया बीरबल के नाम से भी जानते हैं। रात्रि का कार्यक्रम आप श्रोताओं के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। गीत और गजल औतीस गोल संगीतकार का दास्ता नामक कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूँ यारो यही आशा उम्मीद लेकर कि आज का सिलेक्शन भी आप सभी को जरूर पसंद आएगा। जहां पर भी जिस हाल में हो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक शुभ रात्रि प्रकट हो मैं थील फील लॉइस्टर प्लेजीर के साथ। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आपके सेवा और खिदमत में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चून है द प्लस रेडियो पर नतुलक उक्त बलैस्त्र फिया इंटरनेट के लहरों द्वारा फाहुन एफएम चैनल पर आप लोग दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी 24 घंटे रोजाना लगातार फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हो। तो जो भी रेडियो का काम आप फाहुन हिंदुस्तानी के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना चाहते हो यार तो जरूर आप तार करें फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के दफ्तर में 23 कांतोर उरन ऑफ 07-365-2247। क्वालिटी गारंटी और सर्विस के साथ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो काम आप लोगों के लिए बेचैनी से करने के लिए इंतजार में रहते हैं यारो एनी तो फरखीत है उनसे क्वालिटी इस टू खरांसी एन अतुलक नतुलक नतुलक फूलती से आउटेट लेकर दरबै फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। हमसे पहले आप श्रोताओं ने एक अति सुंदर प्रोग्राम सुना जो खास करके छोटा भाई यारो का यार जिगरी दोस्त महान अनाउंसर साथी द वन एंड ओनली करण सिंह जी ने आप श्रोताओं की सेवा में पेश किया। जिस तौर तरीके से भाई करण जी हमेशा की तरह आप श्रोताओं को सेवा करते आया है ये उम्मीद है फुल टीम की तरफ से कि उनका पेश किया हुआ प्रोग्राम आप श्रोताओं को जरूर बेहद पसंद आया हुआ होगा। आज के लिए तहे दिल से धन्यवाद भाई करण जी और हमारे फुल टीम की तरफ से आपको भी एक शुभ रात्रि। अगर आपके घर पे खुशी का दिन एक जश्न मनाया जा रहा है शायद आपके घर पे एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया होगा या तो किसी के जन्मदिन आप सभी धूमधाम से मिलकर मना रहे हैं विवाह संस्कार के तैयारियां में भी हो शायद लगे हो आप जो भी खुशी के दिन जश्न आप सभी मना रहे हैं फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को ढेर सारे बधाइयाँ ही बधाइयाँ खुशियाँ ही खुशियाँ प्यार मोहब्बत के साथ पेश है और ऊपर वाले से हम सब मिलकर पिंती दुआ करते हैं कि आप सभी के नेक मनोकामनाएं नेक इरादे सभी पूर्ण होते जाए। अगर आपके घर पर एक दुख का घड़ियान पड़ा है आप एक मातम में हो गमी में तो फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो अपने फुल टीम के साथ आपके दुख में उपस्थित है मातम में शरीक है और परम पिता परमेश्वर से हम सब मिलकर यही विनती दुआ करते हैं कि आप सभी को हमेशा की तरह सहन शक्ति और शांति प्रदान करते रहे जो बीमार लाचार है आपकी तंदुरुस्ती के लिए हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द तंदुरुस्त हो जाए चंगा हो जाए बेहतर हो जाए जिंदगी के मजे जरूर रोजाना लेते रहना और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को भी खूब जोर तोर से सुनते रहना फन हार्ट बीट शॉप। आप कामयाब हुए हो तो तहे दिल से बधाइयां ही बधाइयां हमारे फुल टीम की तरफ से और अगर नहीं हुए हो बंधु तो चिंता के कोई बात नहीं है ना दिन पे दिन अपने आप पर विश्वास भरोसा यकीन सेल्फ फुर्तराव जोर तोर से बढ़ाते रहना और साथ ही साथ कोशिश भी जारी रखना तो देखना कामयाबी कैसे दौड़ दौड़ कर जल्द से जल्द आकर आपके कदमों को चूमेंगे। देखो मेहनत तो है दौलत का यारी यारो नोइट ऑफ़ फैबो तो खलेट। देश में प्रवेश हुए हो तो फुल टीम की तरफ से सुस्वागतम आपको फेन फकंसी एंड नैचुरली ब्लाइव लाइस्टर नार फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो यू गोना लाइक इट।
देश की छोड़ के देश आप विदेश यात्रा पर जा रहे हो तो फुल टीम की तरफ से आपको भी एक शुभ यात्रा। Fijne vakantie natuurlijk, tamam leuk zonte hei van Hindustani Radio Co. op hun vakantieadres internet Kelero Duara da Plus Radio Kelero Duara. To abhi sunie van Hindustani Radio Co. op uw tablet, smartphone of laptop. Zo bent u van alles op de hoogte van uw favoriete radiostation en dat is natuurlijk the one and only Den Haag Sherka van Hindustani Radio 24 hours at your service. प्रिय श्रोताओं, प्रोग्राम का शुरुआत तो सदियों से करता आ रहा हूं वही शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के साथ। एड फिल्म ललकार 1927 कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी और सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को हमेशा की तरह सुर का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी कि आज गालो मुस्कुरालो महफिले सजा लो क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा। जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो ये कब टूट जाएगा ये कब समाप्त हो जाएगा ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है। इसलिए हम लोग तो सदियों से आप सभी से यहाँ से कहते रहते हैं यारो कि हैव टू नाश्ता ऑल लीफ कंधे से कंधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है यारो। खुद को आगे को बढ़ाना है देश को भी आगे को बढ़ाना है कौम को भी आगे को बढ़ाना है। तो ये शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे अति सुंदर प्रोग्राम लेकर आया हूँ। खास करके अगर आप पुराने नगमे पसंद करते हैं तो पुराने ज़माने के महान संगीतकार बेताज बादशाह के नाम से भी जाने माने जाते थे महान संगीतकार द ग्रेट मदन मोहन जी के कुछ नगमे लेकर आया हूँ और 10 से तकरीबन 11:30 बजे रात्रि तक आप सुनेंगे सिर्फ नगमे जिन मूवीज में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर दिलीप कुमार जी ने काम किए हैं। बीच में कुछ ज्ञान के बातें हैं कुछ शेर शायरी भी है तो कुल मिलाकर हमारा और आपका साथ तकरीबन 11:30 बजे रात्रि तक चलेगा। तो जहां पर भी हो जिस हाल में हो हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को एक शुभ रात्रि प्रकट हो। घर पे हो या तो मोटर कार में सफर कर रहे हो दुनिया के जो भी कोने में कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुंचे और जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना। रवि साहब आइए और सुनाइए।

गालो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो। पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी के मधुर आवाज में हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत। हमारे प्रिय श्रोताओं, वादा के मुताबिक एक ही दम लेकर चलते हैं आप सभी को कार्यक्रम की तरफ, और वो है एक अति सुंदर प्रोग्राम। आज का इस हसीन रात्रि जो आप सभी के नाम है, लेकर आ रहे हैं मशहूर गाने वाली हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का द क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आशा भोसले जी के मधुर आवाज में, फ्रॉम द पुराना मूवी बैंक मैनेजर। मेरा दिल बर हजारों में एक है, मिल के सुनते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम, मैस्ट्रो मदन मोहन जी के साज पर।

Beautiful song, wonderful song by Queen of Rock and Roll, Asha Bhosle ji, from the movie Bank Manager. अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं और इस बार लाते हैं आप श्रोताओं की सेवा में मशहूर गाने वाली भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के ब्यूटीफुल आवाज में. आप सुनेंगे फ्रॉम द मूवी मिनिस्टर 1959, मदन मोहन के साज पर राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ अति सुंदर बयान, उन आंखों में नींद कहां. लता जी

Beautiful song by Queen of Melody, Lata Mangeshkar ji from the movie Minister 1959. Madan Mohan ji ke saaj aur sangeet par aur iti sundar bayan ko likha hai Rajinder Krishan ji ne. एक अति सुंदर बयान रख चुका हूँ आप श्रोताओं की सेवा में और सुनाने को जा रहे हैं इस बार द किंग ऑफ मेलोडी सुरों का बादशाह रफ़ी साहब जी. क्या आवाज़ है, क्या सजाया है ये नगमा को मदन साहब जी ने इतना फीलिंग से. महान लेखक राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ ये अति सुंदर बयान की मेरा पैगाम मोहब्बत के सिवा और कुछ भी नहीं. वन ऑफ माई फेवरेट रफी साहब जी का आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम मिलकर सुनते हैं.

ब्यूटीफुल सॉन्ग सुना दिया आप सभी को, सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी। इट्स अ अनरिलीज सॉन्ग। तो प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं यारो, कुछ ज्ञान के बातें हो जाए। पुराने जमाने के कुछ विद्वानों, कुछ पढ़े लिखे लोगों और कुछ मशहूर मशहूर लोगों ने आज़ादी, छुटकारा, फ्रीहेड के बारे में इतनी सुंदर सुंदर ज्ञान से भरी हुई बातें लिखकर चले गए हैं यारो। कुछ जीवित है और कुछ भगवान को प्यारे हो गए हैं, और ये इतनी सुंदर सुंदर ज्ञान से भरी हुई बातें मैं आप श्रोताओं के साथ बांटना चाहता हूँ। ये अशोमील लेकर के इन बातों से कुछ ना कुछ सीख तो हम लोग जरूर प्राप्त करेंगे, तो जरा गौर फरमाएं। कहकर गया है श्री योहान कास्पर लाफातेर, ही वाज एन स्विट्जरलैंड थियोलॉग एंड मिस्टिकस, लीव्ड फ्रॉम 1741 टू 1801। और योहान कास्पर लाफातेर ने कहा है आजादी के बारे में यारों की, द फ्रीहेड ओम टू बेड्रेगन, te onderdrukken, te roven, te bedriegen, uit te zuigen, de moorden, dat is de vrijheid van de duivel. Een hele goeie hoor. Agemekaiser Dietrich Bonhoeffer, hij was een Duits kerkleider en verzetsstrijder, leefde van 1906 tot 1945. और डिट्रिख बोनहोफर ने कहा है फ्रीहेड आजादी के बारे में यारों की, गहोरसामहेड हैंडल्ड सोंडर टू फ्रागन, फ्रीहेड फ्रागत नार द बेटेकनिस। आगे में कही है श्री रोसा लुक्सेमबर्ग जी ने, ड्यूट्स मार्क्सिस्टिस पॉलिटिका एंड फिलोसोफ, लीव्ड वन 1871 टू 1919। और रोसा लुक्सेमबर्ग ने कही है आजादी के बारे में यारों की, फ्रीहेड इज द फ्रीहेड फॉर द अंडर्स डेंकेंडन। नोग इंटे वन रोसा लुक्सेमबर्ग, ड्यूट्स मार्क्सिस्टिस पॉलिटिका एंड फिलोसोफ, 1871-1919। रोसा लुक्सेमबर्ग ने एक और कही है यारों, और वो कही है कि फ्रीहेड फॉर द अनहांगर्स फन द रेगेरिंग स्लेक्स फॉर द लीडन फन द पार्टे अल सेन से नोग सो टालरेक इस गेन फ्रीहेड। फ्रीहेड बतीकेंट इमर फ्रीहेड फॉर अंडर्स डेंकेंडन। आगे में कहा है श्री मैशियावेली, हे वाज एन फ्लोरेंटाइन्स स्टाट्स फिलोसोफ, इटालियान दुस, leefde van 1469 tot 1527. Om Machiavelli nekha hij azadi ke bare mein yaro ki, als iemand de baas wordt van een stad die gewend is in vrijheid te leven en hij haar niet vernietigt, moet hij erop rekenen door haar vernietigd te worden. Hugo de Groot, hij was een Nederlands rechtsgeleerde en schrijver, leefde van 1583 tot 1645. Al Hugo de Groot nekha hij azadi ke bare mein yaro ki, vrijheid is de macht die we hebben over onszelf. Broeder Roger van Thaizee, Zwitsers theoloog en oprichter van de Thaizee gemeenschap, leefde van 1915 tot 2005. O broeder Roger van Thaizee, azadi ke bare mein yaro ki, wat betekent vrijheid als het zelfzuchtig gebruik ervan de vrijheid van anderen aantast? Mahaguru Sri Buddha, hij was een spirituele leider, geboren als Siddharth Gautama, liefde van circa 370 voor Christus tot 450 voor Christus. Om Mahagyani Sri Buddha ne kaha hai azadi chutkara ke bare mein aro ki.

Beautiful song uit die Sundar Bayan uit de film Ladka Ladki met een Mohan ji ke saaj par suna di aap sabhi ko. Queen of rock and roll Asha Bhosle ji. Ik het is onder mezidaar aap sunenge yaro aur is baar late hai program mein म्यूजिक डायरेक्टर मशहूर गाने वाली द ग्रेट उषा खन्ना जी के मधुर आवाज में आई द फिल्म लड़का लड़की 1966 कंपोज बाय मैस्ट्रो मदन मोहन वो आ रहे हैं.

कमल हो या कमला, विमल हो

Beautiful song, wonderful. Chala, aaj aap shrotaon ke siwa mein. और सुना दी आप सभी को मशहूर गाने वाली भी पुराने जमाने की और म्यूजिक डायरेक्टर द ग्रेट उषा खन्ना फ्रॉम द मूवी लड़का लड़की।

तो आज का इस हसीन प्रोग्राम जो आप सुन रहे हैं स्पेशल मदन मोहन जी का एक आखिरी बयान आप श्रोताओं की सेवा में मैं पेश करूंगा। नैना बड़ से रिम झिम क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के मधुर आवाज में।

वैसे रिम जिम क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के मधुर आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना आज का इस हसीन कार्यक्रम में, जो स्पेशल आप सुन रहे थे मैस्त्रो मदन मोहन जी का, वो समाप्त होने को आया। तभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। स्टे ट्यून ऑन, आप ही का आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है।

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुन है द प्लस रेडियो पर एनाटोलिक उक्त ब्लॉस्ट्रिफिया इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन FM.NL पर वर्ल्ड वाइड। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम। कार्यक्रम में तमाम टैक्सी ड्राइवर्स जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को एक बार फिर से स्वागतम। नैतिक वर्क्स बॉयस एंड बदंग, जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाई से जरूरी खबरें, या तो आप एक व्यापार हो तो जरूर अपने व्यापारी के बारे में, एक ऑर्गामान हो ऑर्गा वुमन हो तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं उसके बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से ऐलान जरूर कराना यार, किफायत सस्ते दाम में। सभी जानकारी बेल तेरस कंतोर यूर अपने 7 3 5 6 2 2 7 4। जो भी रेडियो का काम हो, डेंक ऑन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। बेंट यू नो खेन लेट फन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाए, आपको तो ढेर सारा फायदा ही फायदा है। सभी जानकारी 9 3 5 6 2 2 7 4 पर आप तार करें। इसी तरह हम लोगों के बारे में रिक्लाम बनाते रहना यारो, चर्चा करते रहना। इट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू एंड हमारे फुल टीम की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। वादा के मुताबिक एक ही दम लेकर चलते हैं आप सभी को प्रोग्राम के तरफ। कुछ नगमे रह गया है फ्रॉम द मूवी तराना सुनाने के, तो एक ही दम एक बार फिर भारत रत्न लता जी के मधुर आवाज में आप सुनेंगे मुझे रूठ गए मेरा सांवरिया, अनिल दा के साइज पर।

ब्यूटीफुल सॉन्ग है मुझे रूठ गयो मेरा सांवरिया फ्रॉम द मूवी तराना 1951 भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के ब्यूटीफुल आवाज में अनिल दा के साइज पर। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं और एक और अति सुंदर बयान है ओम किपफेल फॉर्म द क्रेग द मैन विद द गोल्डन वॉइस तलत महमूद जी एक बार फिर सुनने को जा रहे हैं आप सभी को एक मैं हूँ एक मेरी ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट तलत जी का स्पेशल

एक मेरी द मैन विद गोल्डन वॉइस तलत महमूद जी के मधुर आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। एड फिल्म तराना कंपोज बाय अनिल विश्वास जी। अब आप सुनेंगे पार्ट टू फ्रॉम द सॉन्ग मोसे रूट गयो मोरा सांवरिया। एक बार फिर लता जी द सेट वर्जन।

सुंदर बयान मुझे रूट गई मोरा सांवरिया द सेट वर्जन भाग टू क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के मधुर आवाज में अनिल विश्वास की साज पर फ्रॉम द मूवी तराना। तुम्हारे प्रिय प्रिय श्रोताओं कुछ आखिरी शेर्स हो जाए हमारे शेर्स की चाहने वालों के लिए। अर्ज किया है दोस्ती के नाम पे यारों की दोस्ती का पहला पैगाम आपके नाम, दोस्ती का पहला पैगाम आपके नाम, जिंदगी की आखिरी सांस भी आपके नाम, रहे सलामत ये दोस्ती अपनी, रहे हमेशा सलामत ये दोस्ती अपनी, इसे सलामत रखना आपका काम है। जिंदगी की हर अदा में याद रखना, दिल की हर सदा में याद रखना, यही तोहफा बहुत है मेरे लिए आपका, यही तोहफा मेरे लिए बहुत है आपका, खुलूस दिल से हर दुआ में याद रखना। दोस्ती इंसान की जरूरत है, दिलों पे दोस्ती की हुकूमत है, आपके प्यार की वजह से जिंदगी है, आपकी प्यार की वजह से जिंदगी है, वरना खुदा को भी हमारी जरूरत है। आंखें आपकी हो पर आंसू मेरे, जिंदगी आपकी हो पर सांसें मेरी, दिल आपका हो पर धड़कन मेरी, जिंदगी की आखिरी मोड़ पर दुआ होगी, यही है दुआ मेरी। आखिरी शेर आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में यारो, दीप तो आंधी में भी जगमगाते हैं, दीप तो आंधी में भी जगमगाते हैं, फूल तो कांटों में भी महकता करते हैं, कितने नसीब वाले होते हैं वो, कितने नसीब वाले होते हैं वो जिन्हें आप जैसे दोस्त मिला करते हैं। क्या बात है, जियो यारो। हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं एक ही दम बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ और एक दर्द भरी बयान है लता जी के मधुर आवाज में अनिल दा के साज पर की वापस ले ले ये जवानी।

दर्द भरा बयान वापस ले ले ये जवानी, फ्रॉम द मूवी तर्राना, मधुबाला जी के ऊपर ये अति सुंदर बयान पिक्चराइज किया गया है अनिल दा की सांच पर लता जी के मधुर आवाज में। तुम्हारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, फ्रॉम द मूवी तराना एक आखिरी बयान आप सुनेंगे और एक बार फिर महान गाने वाली, मेरे ख्याल से भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी, एक ऐसा गाने वाली थी जो शायद भारत देश में कभी नहीं पैदा होगी। वो दिन कहाँ गए बता ऐ द फिल्म तराना, एक बार फिर लता जी अनिल दा के सांच पर uit 1951, een hele jonge stem van onze Nightingale.

क्या बात है, व्हाट अ वॉइस, क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना, और ये भी साथ ही साथ आखिरी बयान था इस फिल्म तराना अनिल विश्वास जी के मधुर संगीत पर। तो हमारे प्रिय श्रोताओं, सभी गाने आप सुन चुके फिल्म तराना का। अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक फिल्म जो रिलीज किया गया था ऑल्सो इन 1951, हलचल। और इस फिल्म में दिलीप साहब ने काम किया है मलकाए हुसन द ग्रेट नरगिस जी के साथ, और साथ ही साथ उस जमाने के महान अभिनेत्री द ग्रेट सितारा जी के साथ। म्यूजिक डायरेक्टर मोहम्मद शाफी के साज पर आप सुनेंगे सुरों का बादशाह रवि साहब और द नाइटिंगेल लता मंगेशकर जी के मधुर आवाजों में। लागी है आग दिल में, क्या बात है वाह।

अति सुंदर बयान है श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया। लागी है आग दिल में, ऐड फिल्म हलचल 1951 मोहम्मद शाफी सैयद हुसैन के साथ पर सुना दिया आप सभी को भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी और सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी रफी साहब जी uit 1951। Wat waren hun stemmen toen nog jong, zeg. Toen waren die prie schroten. Je tekst had ik aan mijn hisse kakarigram. Jo smaapt hun ik waaia. Je als om in lekker een ghar ko ja raha hoon. Ki jis tau trik se mijn koosjes kia. Aap schroten ko sewa karne me. Aap sabhi ko program pasand aya hua hoga. अगर जिंदगी कुदरत ने साथ दिया तो आने वाले रविवार शाम 5 बजे मैं आप श्रोताओं से फिर मिलने वाला हूँ स्पॉन्सर किया हुआ प्रोग्राम लेकर सरनामी संगीत, जिसमें पहला अध्याय बैठक गाना, दूसरा अध्याय कुछ सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक और उसके बाद कुछ नए नए आवाजें फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का मनचाहा रेडियो स्टेशन है ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है। अब हमारे बात एक से एक कोलीखास आप सभी को सेवा करने वाले हैं। खास करके शुरुआत करते हैं हम लोग महान अनाउंसर साथी भाई अमित कुमार जी के साथ, उसके बाद भाई दिलीप जी, भाई पवन है भी प्रोग्राम में, तो ज़रूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना। मैं आंध्र को लेखस और जाते जाते हमेशा की तरह कुछ ना कुछ तो गुनगुना देता हूँ ना।

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुन है द प्लस रेडियो पर है नतीलक उक्त भलाइस्ट्रफिया इंटरनेट के लहर द्वारा फाउन FM.NL पर यह कार्यक्रम आप श्रोताओं सुन रहे हैं। हमारी फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर्स जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं आप सभी को भी एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। नतीलक वर्क्स बॉयस एंड गर्ल्स एंड नतीलक बदंत हैं। तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाइश हो, जरूरी खबरें, या तो आप एक व्यापार हो, इवेंट ऑर्गेनाइजेटर, ऑर्गा मैन या तो ऑर्गा वुमन हो, तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं या तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो, तो देखना कैसे चमककार पे चमककार हो जाएगा। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। द प्लस रेडियो के लहरों द्वारा एंड इंटरनेट के लहरों द्वारा वर्ल्ड वाइड, तो आपका जो भी रेडियो का संदेश होना तमाम लोग सुनेंगे। सर्टिफाइड सिस्टम सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो अपमात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे और ये भी किफ़ायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप श्रोताओं से यही कहते आ रहा हूँ कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप श्रोताओं को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा यार, वो आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी बेल तेरस कांतोर यूर ऑफ 07-2267-40 पर या तो आप तार करें अब 07-362-2077 पर। जो भी रेडियो का काम हो देंक अन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। बेंट यू नो खेन लिट फन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाए। आपको तो ढेर सारा फायदा ही फायदा है और हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों के बारे में आप लोग चर्चा करें कि जैसे आप सदियों से हम लोगों का प्रोग्राम कार्यक्रम को सुनते आ रहे हैं, आपके हिति प्रेमी रान परोस कोलेखवन और बिरमनवन भी सुने, तो हम लोगों के बारे में ज़रूर बातें शाते करते रहना और इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। वादा के मुताबिक एक ही दम बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ यारो, और आप सभी तो मालूम है कि बीते हुए इस हफ्ते मैंने सभी नगमे जो काफ़ी दिन लगा मुझे सुनाते सुनाते दिलीप कुमार जी के फिल्मों में जो एक्ट किए थे ना, सभी नगमे मैंने आप सभी को सुनाया। शुरुआत किया था अपना जो एक्टिंग का करियर है मैं द फिल्म वचन एंड है एंड द में द फिल्म कीला इन 1998। तो कुल मिलाकर 60 फिल्मों में दिलीप कुमार जी ने अपना अदाकारी पेश किया और सभी फिल्म्स के गाने मैंने आप सभी को सुनाया। तो अब लेकर चलते हैं एक और महान एक्टर अभिनेता द ग्रेट ग्रेट राजेंद्र कुमार जी, जिसे हम प्यार से जुबली कुमार के नाम से भी जानते हैं। तो उन्हीं महान एक्टर के फिल्मों के गाने आप सुनेंगे और आगामी में कुछ ना कुछ ये महान एक्टर के बारे में आप ज़रूर सुनते रहेंगे। तो एक छोटा रोल से शुरू किया था राजेंद्र कुमार जी अपना एक्टिंग का करियर में द फिल्म जोगन इन 1950 क्लाइन रोल गस्पील। दरफोर हथ ही अस असिस्टेंट फिल्म डायरेक्टर 5 साल तक वो काम किया और उसके बाद जब लोगों ने जोगन में उनका जो छोटा रोल था लोग ने बहुत पसंद किया एंड सैन खरूत दौर बराक वर्दर में द फिल्म वचन 1955। और इस फिल्म में राजेंद्र कुमार जी ने काम किया है मलकाए हुस्न, गीता बाली, दिलात द फ्रॉ फन शमी कपूर वर्थ
En ook Balraj Sahni heeft ook in deze film gespeeld. Sangeetkar Ravi hai aur Chandra milke ye dono ne in film mein sabhi gaane pe apna saaj diye. To usi film Vachan se aap nagma ab sunenge. और एक बहुत ही सुपरहिट सॉन्ग है आप श्रोताओं के सेवा में मैं रख चुका हूँ प्लेयर में सुनाने के लिए. शुरू का बादशाह किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी साहब जी के मधुर आवाज में साथ दे रही है क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आयशा भोसले जी. मिल के सुनते हैं जब लिया हाथ में हाथ एवर ग्रीन सॉन्ग स्पेशल फॉर हमारे सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम.

Belia, Haat Me Haat, beautiful song from the movie Vachan, Ravi aur Chandra ne milke iti sundar song ko sajaya hai, aur gaane wale the Suron Ka Badshah, Rafi saab aur Asha Bhosle ji. अगला बयान के तरफ बढ़ते हैं. एक बहुत ही दर्द सा भरा हुआ बयान है. भीख मांगते हुए आप सुनेंगे कि रफ़ी साहब जी किस तरह से ये नगमा को गाया है कि जैसे खुद वो भीख मांगता है और साथ दे रही है अपत एंत अनपार अल्फाजे. आशा भोसले जी वचन ने is the movie's names 1955 और उस फिल्म में तो काम किया है गीता बाली जी के साथ राजेंद्र कुमार जी ना. तो मिल के सुनते हैं.

एक पैसा दे दे दर्द से भरा हुआ बयान एक फिल्म वचन 1955 रवि शर्मा के साथ पर सुनाया आप सभी को सुर का बादशाह पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब साथ दे रही थी अशा भोसले जी। वो दिन कहाँ गए मेरे ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी वचन कंपोज बाय रवि सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को अशा भोसले जी 1955।

काला दर्द सा भरा हुआ नगमा, वो दिन कहाँ गए। अशा भोसले जी के ब्यूटीफुल आवाज में इतनी सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। एड फिल्म वचन प्रेम धवन लेखक ये अति सुंदर बयान को लिखा, कंपोज बाय रवि शर्मा। इस जहां में हमें ऐसे जीना पड़ा, एक और दर्द सा भरा हुआ बयान आप सुनेंगे एक बार फिर आशा भोसले जी, कंपोज बाय रवि।

Hemmee from the movie Vachan 1955 Queen of Rock and Roll Asha Bhosle ji ka beautiful song aap suna composed by Ravi Sharma. Agla bayan ki taraf badhte hain lekin usse pehle yaro kuch sher shayari ho jaye na hamare shers ke chahne walon ke liye. अर्ज किया है कुछ दोस्ती के बारे में शेर शायरी है यारो डायरेक्ट फ्रॉम मुंबई भाई भूपेंद्र जी ने भेजा है और लिखा है यारो कि दोस्ती क्या होता है हमने तुम्हें देख के जाना दोस्ती क्या होता है हमने तुम्हें देख के जाना दोस्ती क्या होता है हमने तुम्हें देख के जाना यारो तुम शायद हमें भूल जाओ तुम शायद हमें भूल जाओ ए दोस्त पर हमारे लिए मुश्किल है तुम्हें भूल पाना क्या बात चेहरा भूल जाओगे तो शिकायत नहीं करेंगे नाम भूल जाओगे तो गिला नहीं करेंगे ऐ मेरे दोस्त खुदा की कसम दोस्ती भूल जाओगे तो माफ नहीं करेंगे आंखों में बसने वाला प्यारा सा इशारा हो आंखों में बसने वाला प्यारा सा इशारा हो अंधेरी रात में चमकता सितारा हो छू भी नहीं सकती उदासी कभी उसको छू भी नहीं सकती उदासी कभी उसको जिसका कोई दोस्त इतना प्यारा हो तुम जैसा गुजरे दिनों की भूली हुई बात की तरह गुजरे दिनों की भूली हुई बात की तरह आंखों में जागता है कोई रात की तरह तुमसे उम्मीद थी के निभाओगे दोस्ती तुमसे तो उम्मीद थी के निभाओगे दोस्ती तुम भी बदल गए मौसम और हालात की तरह होता है यारो एक अलग पहचान बनाने की आदत है हमें सखम हो जितना गहरा मुस्कुराने की आदत है हमें सब कुछ लुटा देते हैं दोस्ती में सब कुछ तो लुटा देते हैं दोस्ती में क्योंकि दोस्ती निभाने की आदत है हमें फूलों से खुशबू चुराई नहीं जाती फूलों से खुशबू चुराई नहीं जाती सूरज से रोशनी छिपाई नहीं जाती कितनी भी दूर क्यों ना हो तुम कितनी भी दूर क्यों ना हो तुम ऐ मेरे दोस्त दोस्ती में आप जैसी दोस्त की दोस्ती भुलाई नहीं जाती तो ये था कुछ शेर्स दोस्तों के बारे में जो मैं आप श्रोताओं को सुनाया भी और ये डायरेक्ट यारो का यार भाई भूपेंद्र हमेशा की तरह भेजते रहते हैं मुझे डायरेक्ट फ्रॉम मुंबई अगला बयान यू ही चुपके ब्यूटीफुल सॉन्ग एक बार फिर आशा भोसले और रवि साहब के मधुर आवाज में ये 30 सुंदर बयान आप सुनेंगे

0: लाइक
1: यूं ही चुपके चुपके ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी वचन 1955 अश्य भोसले और रवि के आवाज में तीसुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना कंपोज बाय मास्ट्रो रवि शर्मा। अगला बयान एक बहुत ही माना जाना सॉन्ग है, बचपन से हम लोग ये गाने सुनते आ रहे हैं और जरा खिड़की खोल के देख लो बाहर शायद निकला होगा चंदा मामा दूर के। आशा भोसले की मधुर आवाज में आई द फिल्म वचन कंपोज बाय रवि।

ब्यूटीफुल एवरग्रीन सॉन्ग सुनाया आप सभी को चंदा मामा दूर के फिल्म वचन, रवि शर्मा की साज पर प्रेम धवन का लिखा हुआ अति सुंदर बयान, क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आशा भोसले जी के मधुर आवाज। जरा सीख लो आंखियों से शर्माना, क्या बात है। एक बार फिर आशा भोसले जी के ब्यूटीफुल आवाज में रवि शर्मा का कॉम्पोज किया हुआ अति सुंदर प्यारा सा धुन, लेखक है प्रेम धवन इस ब्यूटीफुल सॉन्ग का, मिलकर सुनते हैं।

0: जरा सीख लो अंखिया शर्माना, अपने पिया के याद में क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आशा भोसले। और ये था आखिरी सॉन्ग फ्रॉम द मूवी वचन 1955, कंपोज बाय रवि शर्मा और लेखक था प्रेम धवन। तो हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, सभी नगमे फिल्म वचन का मैं आप सभी को सुना चुका। अब लेकर चलते हैं एक फिल्म जो रिलीज किया गया था 1955 में, फिल्म आवाज। इस फिल्म में राजेंद्र कुमार जी ने काम किया है मलकाए हुस्न ब्यूटीफुल एक्ट्रेस नालिनी जसवंत जी के साथ। अनवर हुसैन भी इस फिल्म में काम किए हैं, मुकरी भी, और संगीतकार सलील चौधरी सलील दा के सांच पर। लेखक है दो दो शैलेंद्र और प्रेम धवन। तो फिल्म आवाज से आप नगमे सुनेंगे, एक अति सुंदर मज़ेदार सॉन्ग आप सुनेंगे अभी। और सुनाने वाला है महान गायक हसीनों का पुजारी की शोरदा के मधुर आवाज में। और लिखा है अति सुंदर बयान को देखा जाए सिया सरहादी। मिलके सुनते हैं आरा राम तारा राम दुनिया के कैसे गम।
1: आरा राम तारा राम

कसम, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, हर रम तर रम दुनिया के कैसे कैसे

जान, लैला मांगे मजनू से दिल का लगान, कोई रोए दुख से लगाए कोई तान, एक मिस्टर शमशान जाए दूजा कब्रिस्तान।

0: की कसम,
1: कहीं ज्यादा कहीं कम,
0: कहीं ज्यादा कहीं कम, हररम तररम दुनिया के कैसे कैसे गम, कहीं ज्यादा कहीं कम, हररम तररम दुनिया के कैसे कैसे गम, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा और कहीं
2: बहुत ही मजेदार सॉन्ग किशोरदा के हरकतों और नटखटपन से तो आप सभी महफूज हो और उन्हीं के अंदाज में इतनी सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। इस फिल्म आवाज़ 1956 कंपोज बाय सलील चौधरी, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है गीत और गजल ओत इस गोद नामक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, जिनमें आप नगमे सुन रहे हैं जिन मूवीज में महान अभिनेता राजेंद्र कुमार जी ने काम किए हैं। तो हम पहुंचे हैं फिल्म आवाज जो रिलीज किया गया था 1956 तक में। मजबूर मोहब्बत ने फिर हमको पुकारा, ब्यूटीफुल सॉन्ग, और इस बार भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के मधुर आवाज में एक फिल्म आवाज नहीं थी सेशन फाइव तक सलील दा के सांच पर।

ब्यूटीफुल सॉन्ग आप श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया। सुनाने वाली थी क्वीन ऑफ मेलोडी भारत रत्न लता मंगेशकर जी, आई फिल्म आवाज 1956 सलील चौधरी के साथ पर।

समय पे प्रिय श्रोताओं, अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो ये रेडियो स्टेशन है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। आफ्टर द ब्रेक।

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुन है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर और तब लुस्टर फिया द प्लस रेडियो एंड नेचुरली इंटरनेट के लहरों द्वारा वर्ल्ड वाइड 24 घंटे रोजाना लगातार जो भी रेडियो का काम हो देखकर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो खास फरमाइशों जरूरी खबरें या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर या तो आप एक इवेंट ऑर्गेनाइजर हो तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं या तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यार हो तो देखना कमाल ही कमाल हो जाएगा। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। डिवाइसेस से नाम सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो जरूरी खबरें हो या तो फरमाइशें हो या अपने व्यापारी के बारे में हम लोग कमर्शियल बनवा कर और जितने बार आप चाहे यार उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे और ये भी किफ़ायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से यही कहते आ रहा हूँ यारो कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को देश भर में नहीं मिलेगा यारो। आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी बेलेटाइनेंस कांतोर यूर ऑप 07-2-13-65-68-90। तो जो भी रेडियो का काम हो देंक ऑन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। इसी तरह हम लोगों के बारे में रिक्लाम बनाते रहना यारो। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू और इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। कंटिन्यू नो इन लेट फन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाए। आपको तो ढेर सारा फायदा ही फायदा है। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें अपने 07-2-13-65-68-90। एक ही दम लेकर चलते हैं आप सभी को कार्यक्रम के तरफ यारो। और बीते हुए सप्ते में आप सभी को सुना दिया था फिल्म कब फिर मिलोगी जो 1974 में रिलीज किया गया था और इस फिल्म में दिलीप साहब ने काम किया था माला सिन्हा और विश्वजीत के साथ। तो सभी नगमे तीन नगमे सिर्फ थे इस फिल्म में। अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक मूवी जो रिलीज किया गया था 1974 में फिल्म बैराग। और इस मूवी में दिलीप साहब ने अपने बीवी धर्मपत्नी मलकाय हुस्न सैरा बानो जी के साथ काम किया है। संगीतकार है द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी। तो उसी फिल्म में से आप नगमे सुनेंगे। ब्यूटीफुल सॉन्ग छोटी सी उम्र में सुनने को जा रहे हैं आप सभी को भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी आनंद बख्शी के अल्फाज और द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी के साज।

ऐ मर जाऊंगी छोटी सी उम्र में लग गया रोग, क्या बात है। जो फिल्म बैराग 1976, दिलीप कुमार और सायरा बानो का ये ब्यूटीफुल मूवी में से ये सॉन्ग आप सुना, लता मंगेशकर जी की मधुर आवाज में, आनंद बख्शी के अल्फाज से, और साज था द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी का। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं हमारे प्रिय श्रोताओं, और इस बार एक मजेदार सॉन्ग है, पीते पीते कभी कभी यूं। आगे सुनिए एड फिल्म बैराग कल्याण जी आनंद जी के साथ, सुरों का बादशाह रवि साहब और क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आयशा भोसले जी के मधुर और ब्यूटीफुल आवाज़ें।

जाम बदल जाते हैं, हो जाता है यारो। अनंत बख्शी के अल्फाजे कल्याण जी आनंद जी के साज और आवाजें थे कोरस और क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आयशा भोसले और पद्मश्री मोहम्मद रवि साहब जी। सारे शहर में तुझ जैसा कोई नहीं है, क्या बात है, कैसा तारीफ है कि सारे शहर बंबई बहुत बड़ा। और दिलीप साहब कह रहा है कि सारे शहर में आप जैसा खूबसूरत कोई नहीं है, अपनी बीवी को कह रहा है। तो मिलके सुनते हैं आइडियो फिल्म बैराग, जो पति पत्नी ने मिलकर इस फिल्म में काम किए आनंद बख्शी के अल्फाजे और कल्याण जी आनंद जी के साथ रवि साहब और आयशा जी के आवाज़ें।

कोई गोरख है तू हसीना बड़ी खूबसूरत है तू मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

0: किसके करता हूँ आशिक मेरा नाम है इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है ऐश करना मेरी जान मेरा काम है
1: ऐसे भी हो

सारे शहर में आप सा कोई नहीं आई डो फिल्म बैराग 1976 कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी आवाजित है आशा जी और मोहम्मद रफी साहब जी का और लिखा है अति सुंदर बयान को महान लेखक आनंद बख्शी जी ने। मैं बैरागी, क्या बात है, एक से एक अति सुंदर सुंदर नगमे। इस फिल्म में भी एक भजन फोर आया था और मैं आप सभी को सुनाने को चाहता हूँ। ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे, महान गायक पद्मश्री महेंद्र कपूर जी के आवाज में अति सुंदर बयान आप सुने कॉम्पोज बाय कल्याण जी आनंद जी।

ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे, फ्रॉम द मूवी बैराग 1976, पद्मश्री महेंद्र कपूर जी के मधुर आवाज में, कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी। अगला बयान के तरफ लेकर चलते हैं आप सभी को हमारे प्रिय श्रोताओं, और इस बार आप सुनेंगे मैं बैरागी लेकिन मैं जोर जोर से नाचूं। ऐसी फिल्म बैराग 1976 कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी, अल्फाज है आनंद बख्शी का और आवाज भारत रत्न लता जी और सुर का बादशाह रफी साहब जी।

आप चुन है यारो गीत और गजल ओथ इस गोद नाम कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। वक्त हो चुका है कुछ शेयर्स हो जाए हमारे शेयर्स के चाहने वालों के लिए। अर्ज किया है भाई भूपेंद्र जी कुछ दोस्ती के बारे में।

भुलाना गलत है, दोस्त को भुलाना गलत है, उन्हीं का जिंदगी भर साथ है। अगर भूल गए तो खाली हाथ है, अगर भूल गए तो खाली हाथ है, और अगर साथ रहे तो जमाना कहेगा क्या बात है। दोस्ती अच्छी हो तो रंग लाती है, दोस्ती गहरी हो तो सबको भाती है, दोस्ती नादान हो तो टूट जाती है, पर अगर दोस्ती अपने जैसी हो तो इतिहास बनाती है। दोस्ती करो तो धोखा मत देना, दोस्ती करो तो धोखा मत देना, दोस्तों को बेवफाई का तोहफा मत देना, कोई तुम्हें रहे याद करके, कोई तुम्हें रहे याद करके, ऐसा कभी मौका मत देना। खुदा करे सलामत रहे किसी दुआ की तरह, खुदा करे तुम सलामत रहे किसी दुआ की तरह, एक तू और दूसरा मुस्कुराना तेरा। क्या ट्रस्ट इज लाइक अ मिरर, ट्रस्ट इज लाइक अ मिरर, वंस यू ब्रेक इट यू कैन नेवर लुक एट इट द सेम अगेन।

तुम हमेशा खुश रहो ऐसी दुआ है हमारी, और आगे बढ़ते रहो ऐसी दुआ है हमारी। तुम जहां भी हो जैसी भी हो, एक दिन हमें ढूंढ पाओ ऐसी ख्वाहिश है हमारी। तो था कुछ शेर्स आगे के प्रोग्राम में, कुछ और कोशिश करूंगा सुनाने के। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं यारो, और जैसे मैं आप सभी को कहा ना कि सभी नगमे फिल्म बैरा का मैं आप सभी को सुना दिया, अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक फिल्म जो रिलीज किया गया था 1981 में, और जबरदस्त कास्टिंग इस फिल्म में किया गया था, खास करके मनोज कुमार जी के डायरेक्शन में। और मनोज जी तो उसको प्यार से लोग भारत भी बुलाते हैं ना, तो जबरदस्त फिल्म था, ब्लॉकबस्टर मूवी। और इस फिल्म में दिलीप कुमार जी ने एक महान रोल अदा किया, और दिलीप जी के साथ प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर द ग्रेट मनोज कुमार जी, साथ में हेमा मालिनी जी, शत्रुघ्न सिन्हा, परवीन बाबी, प्रदीप कुमार जी, शशि कपूर, सारिका, क्या बात है, जबरदस्त स्टार कास्ट इस मूवी में था। तो इसी फिल्म में से आप नगमे सुनेंगे, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का, और गाने सभी लिखे हैं संतोष आनंद जी ने। तो मिलके सुनते हैं ये एक सुपरहिट एवरग्रीन सॉन्ग, जो देखा जाए तो 26 मिलियन से ज़्यादा बार लोग सुन चुके हैं इस सुपरहिट सॉन्ग को। तो एक बार हम फिर भी आप सभी को सुना देना कि जिंदगी की ना टूटे लड़ी, क्या बात है, स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम।

फ्रॉम द सुपरहिट मूवी क्रांति, माइटी मुकेश जी का सुपुत्र नितेन मुकेश जी के मधुर आवाज में भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी साथ दे रही थी। महान लेखक संतोष आनंद के लिखा हुआ ये सुपरहिट सॉन्ग कंपोज बाय एलपी लक्ष्मीकांत प्यारे लाओ। अगला बयान सुनाने को जा रहे हैं एक बार द सेम कॉम्बिनेशन, क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी और नितिन मुकेश जी मिलकर सुनाते हैं लोई शमाशा लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर संतोष आनंद का अल्फाजे।

0: Channa Jore Garam Babu uit de film Kranti 1981, A Great Composing by Mahan Sangeetkar Jori Lakshmikant Pyarelal, Mahan Star and Singing Cast. और ये नगमा आप सभी को सुनाया नितिन मुकेश रवि साहब लता जी और किशोरदा। तो दोस्तों अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, आप भी जाइए कुछ इस्तेमाल कीजिए, चाय कॉफी या जो आप पी रहे थे उसको बैग फिल कीजिए और साथ ही साथ विज्ञापन और देश विदेश का समाचार भी सुनते रहना। ब्रेक के बाद मिलता हूँ यारो, कहीं जाना मत।
1: डीएबी प्लस रेडियो सुनाते हैं साफ और स्पष्ट आवाज, डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग की राज। आप भी ले द प्लस रेडियो और दूर दूर तक देश के कोने कोने में सुने। वाओ
0: तुम्हारे प्रिय प्रिय साथियों, प्रोग्राम का शुरुआत तो सदियों से मैं करते आ रहा हूँ, वही शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के साथ, फ्रॉम द मूवी ललकार 1970, कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी, और हमेशा की तरह आप सभी को सुनाने को जा रहे हैं सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी के। आज गालो मुस्कुरा लो, महफिले सजा लो, क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा, जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो, ये कब टूट जाएगा, ये कब समाप्त हो जाएगा, ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है। इसलिए हम लोग तो सदियों से आप सभी से यहाँ से कहते आ रहे हैं कि हैव टू नास्ट आउट एट लीफ, कंधे से कंधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है यारो, खुद को आगे को बढ़ाना है, देश को आगे को बढ़ाना है, कौम को भी आगे को बढ़ाना है। तो ये शिक्षा सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे कुछ पुराने नगमे कंपोज बाय द जीनियस म्यूजिक डायरेक्टर फ्रॉम द लेट 40s, 50s, 60s टिल 70s, महान संगीतकार। शुरुआत में थोड़ा बहुत एक्टिंग किया और साथ ही साथ एक जबरदस्त बावर्ची था, कॉक भी था, और इतने मीठे मीठे धुने ये महान फनकार ने हम लोग के लिए बनाकर छोड़े हैं कि सदियों तक हम लोग मजे लेंगे लेकिन दिल नहीं भरेगा। और उसके बाद कुछ पुराने नगमे आप सुनेंगे जिन मूवीज़ में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर दिलीप कुमार जी ने काम किए हैं। बीच में कुछ ज्ञान के बातें हैं, कुछ शेर शायरी है। तो ज़रूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना, जहां पर भी हो, जिस हाल में हो, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो लव्स यू ऑल। रफी साहब

गालो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो, पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी के मधुर आवाज में हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत। तुम्हारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, गीत और गजल और इस गोल संगीतकारों का दास्ता नामक प्रोग्राम का शुरुआत मैं कर रहा हूँ। आज का इस हसीन प्रोग्राम में लेकर आ रहा हूँ, जरा दिल थाम के बैठिए, अति सुंदर बयान आप श्रोताओं की सेवा में पेश करने वाला हूँ मैं। लाखों करोड़ का दिल चुराने वाला दमाए थे मुकेश जी के मधुर आवाज में साथ दे रही है क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आयशा भोसले जी, मदन मोहन जी के साथ पर फ्रॉम द मूवी चौकीदार अल्फाजे है राजेंद्र कृष्ण जी का जिंदगी जिंदगी।

जिंदगी ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी चौकीदार, महान संगीतकार मदन मोहन जी के मधुर संगीत पर। और अल्फाजे थे राजेंद्र कृष्ण की, आवाजें थी सुरों का बादशाह रवि साहब जी, लाखों करोड़ का दिल चुराने वाला रमाई थी मुकेश, और क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आशा भोसले। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं और इस बार लाते हैं भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के मधुर आवाज में आप सुनेंगे फ्रॉम द मूवी जहां आ रहा हाल दिल, यू उन्हें सुनाए गए। क्या बात है, ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशल आप सभी प्री श्रोताओं के नाम।

Beautiful Gazelle, sung by भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी, मदन मोहन जी के मधुर संगीत पर। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है यारो, कुछ नगमे आप सुन रहे हैं महान संगीतकार मदन मोहन जी के बनाए हुए धुने। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं और इस बार द पुराना मूवी अनपढ़ निकटिंग ट्वीन सेस्तख है इसी में प्यार की आबरू। जरा लफ्जों पे ध्यान दीजिए, महान लेखक राजा मेहदी अली खां के अल्फाजे मदन मोहन जी के साथ और भारत रत्न लता जी के मधुर आवाज। एंजॉय द म्यूजिक।

beautiful song, masterpiece of composing by maestro Madan Mohan ji ki hai si mein pyar ki aabru uit de film Anpar 1962 Malasina par ye picture gaya hua ati sundar song. Aur khas baat ye hai jab ye song nikla aur mahan sangeetkar Naushad Ali jab ne composing suna मदन मोहन जी का तो इतना तारीफ किया इस कंपोजिंग के बारे में. कुछ बातें भी लाइव उन्होंने कहा कि जिस तौर तरीके से मदन जी ये गाना को बनाया है उनका दिल को छू लिया था. और ये कंपोजिंग पे कभी कभी वो कह देता था महफिल में कि वो अपने सारी पूंजी इस गाने पर कुर्बान करने के लिए तैयार है. ये खास और खुमेई बहुत ही बड़ा बात है जो ये महान संगीतकार तारीफ के रूप में मदन मोहन जी को दिया. अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं यारो, वो चुप रहे तो मेरे, फ्रॉम द मूवी जहां आ रहा. एक बार फिर भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी. आप श्रोताओं को तो मैं कितने बार कह चुका हूं प्रोग्राम में कि जो रिश्ता लता जी और मदन मोहन जी का था वो जबरदस्त भाई बहन का रिश्ता था. और अपने बहन के लिए तो कितने मीठे मीठे धुने बनाए महान संगीतकार. मिलके सुनते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशल.

दुनिया करे सवाल, अति सुंदर बयान आई द फिल्म बहु बेगम 1967। महान संगीतकार मदन मोहन जी के साँच पर साहिल लुधियानवी जी का लिखा हुआ अति सुंदर बयान। अगला बयान के तरफ बढ़ते हैं यारों, और दिख जाए महान अभिनेत्री मीना कुमारी जी पर ये अति सुंदर बयान पिक्चराइज किया गया है। एक फिल्म अकेले मत जइयो 1963। एक बार फिर भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के मधुर आवाज में मदन मोहन जी के साँच मजरू सुल्तानपुरी के अल्फाजे।

एक भी ब्यूटीफुल सॉन्ग महान संगीतकार मदन मोहन जी के मधुर साज पर आई फिल्म अकेली मत जइयो, भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के आवाज में आप ये अति सुंदर बयान सुना। अल्फाज थे महान लेखक मजरू सुल्तानपुरी जी का। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं हमारे प्रिय श्रोताओं। गीत और गजल ओटिस गोत संगीतकारों का दास्ता नामक कार्यक्रम में आप सुनेंगे नगमा ओ शेर की सौगात। एक बार फिर भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी फ्रॉम द मूवी गजल 1960 साहिर लुधियानवी के अल्फाजे मदन मोहन जी की साज।

माँ ओ शेर की सौगात अति सुंदर बयान आप श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया फ्रॉम द मूवी गजल निगेटिव शायर लुधियानवी के ब्यूटीफुल अल्फाज़े कंपोज बाय मास्टरो मदन मोहन. आवाज था भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी का. हमारे प्रिय श्रोताओं यही तक था आज का ये हसीन स्पेशल मैस्त्रो मदन मोहन जी का, महान संगीतकार जी का, जो समाप्त होने को आया. अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा. तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है. आफ्टर द ब्रेक.

श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे प्यारे सुनने वालों, आप सभी को एक शुभ दिवस प्रकट हुए। कहते कि आज से बेहतर कुछ भी नहीं, आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। हर बार की तरह आज भी कहती हूँ, इस पल भी कहती हूँ कि हार्दिक से स्वागत हो।

सुंदर अति सुंदर कृष्ण भजन यहाँ से मिलकर हमने श्रवण कर ली है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो प्रोग्राम में, भक्तिमाला प्रोग्राम यहाँ से जिसमें हम गोटा लगाते हैं एनर्जी उपलब्ध करने के लिए, ताकि हम अपना जीवन के साथ साथ ये दिन जो मिले हैं इसे हम बहुत प्यार के साथ बहुत खुशी के साथ इसे गुजारें। कम चीज़ों में भी बड़ी खुशी मिल सकती है, कम चीज़ों में बड़ी खुशी मिल सकती है, बस नज़रिया चाहिए। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की है, जिसने संसार को बदलने की कोशिश की है वो हार गया है, वो हार गया है जिसने संसार को बदलने की कोशिश किया गया है, पर जिसने खुद को बदल लिया है वो जीत गया है। और जो जीता वही सीखा।

राम राम बोलिए, बड़ा अच्छा लगता है। तो मेरे दोस्त, आप सभी को राम राम हो फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो जरिए के सुप्रभात। सुप्रभात मेरे सभी प्यारे सुनने वालों के लिए, जिसने जीवन का वही रिश्ता सच्चा है मेरे दोस्त, कि जीवन का वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे भी सम्मान दे। कितना सुंदर बात है ना। परमात्मा दोनों तरह से आजमाता है हम सभी को। हाँ, परमात्मा दोनों तरह से हम सभी को आजमाता है, कभी देकर और कभी लेकर। सुप्रभात हो, सुप्रभात हो आज के दिन।

अमारामा रतते रतते, मदर इंडिया के ये फिल्मी गाना के धुने बहुत अच्छा लगता है सुनने के लिए। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे संवरिया, रामा रामा रतते रतते। बदल जाओ मेरे दोस्त, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना तो सीखो मेरे दोस्त।

अति सुंदर मेरे दोस्त, आपके लिए positieve energie om op te laden. Ek umre ke baad, mere dosto, us umre ki baad, umar bhar yaad aati hai. Ek umre ke baad, us umre ki baad yaad aati hai, umre bhar yaad aati hai. पर वो उम्र फिर उम्र भर नहीं आती है।

नदी। जैसे सूर्यदेव जैसे सूर्योदय के होने होते ही अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही मन की प्रसन्नता से सारी बाधाएं शांत हो जाती है। जैसे सूर्य उदय के होते ही अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही मन की प्रसन्नता से सारी बाधाएं शांत हो जाता है।

आपका दिन अच्छा हो या बुरा, वह पर ये पल जो है वो जरूर से अच्छा, जो हम शुरुआत करेंगे तो अच्छा ही होगा।

कितने दर्द भरी बयान, कितनी दर्द भरी पुकार हम अपने इष्ट से करते हैं और अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि वही एक तो है जो हमारा सुनता है। दिल से ये दुआ है, प्रार्थना है मेरे दोस्त, कि ईश्वर हम सबको वो खुशी दे जिसे आप और मैं रोज़ ईश्वर से, अपने प्रभु से, अपने इष्ट से

0: और जीवन के सबसे महंगी चीज़ है आपका वर्तमान। वर्तमान जो एक बार चला जाए ना दोस्त, तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे खरीद नहीं सकते। और वर्तमान क्या है? हाँ, वर्तमान ये है कि आज इस वक्त इस पल, ये पल जो है यही हम सबके वर्तमान है। ये गुजर गया तो गए।
1: जय बजरंग। जब धर्म बढ़ा, जब भय ने धर्म को जकड़ा, तब वानर नहीं

जय बजरंग बली, दिल से फैसला करो मेरे दोस्त कि तुम्हें क्या करना है। दिल और दिमाग से फैसला करो कि तुम्हें क्या करना है। दिल से फैसला करो कि तुम्हें क्या करना है, दिमाग तरीका निकाल ही लेगा। दिल और दिमाग के ये बात है कि हम दिल से सोचे और दिमाग उसका तरीका निकाल देता है। आपका दिन अच्छा हो और अच्छा हो कि आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जरूर से खुशहाल में हो। अपने आप को ख्याल भी रखना।

ट्रेडिशनल हिंदी भोलेनाथ भजन अशोक मस्ती जी के आवाज़ में। अति सुंदर सुप्रभात मेरे दोस्त, मेरे प्यारे प्यारे सुनने वालों, सभी भक्त प्राणियों के वास्ते। उम्मीद मत छोड़ना, कल की सुबह आज से बेहतर हमारा होगा। अच्छा, दिन की शुरुआत अच्छे सोच से होती है। आपका दिन, हम सबका दिन मंगलमय होवे। इस वक्त के लिए स्वीकार कीजिए मेरी प्यार भरी नमस्कार।

0: गया है। तो यहाँ से अपना मान्यवर पंडित जी श्री राजकुमार महातम जी को हार्दिक से स्वागत कहती हूँ। पंडित जी आप आकाश में हैं।
1: धन्यवाद जी। हरि ओम महादेवम नारायण परम ब्रह्मा नारायण परम तपाम नारायणो परो देवा सर्वनारायण सदाम ओम नीलम भुजिश्यामल कोमलंगम सीता समारूपित्वाम भागम पाडु महासायिक चारुचापम नमामि राम रघुवंशनाथम। हरि ओम नमः संभवाय च उमैव भवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः स्वासुत्राय च मोक्षुक स्वरूप ईश्वर को नमस्कार। संसार सुख देने वाले प्रभु को नमस्कार। कल्याण करने वाले प्रभु को नमस्कार। आनंद देने वाले प्रभु को नमस्कार। मंगलमय ईश्वर को नमस्कार और अत्यंत कल्याण स्वरूप और कल्याणकारक ईश्वर को हमारा बारंबार नमस्कार हो। सर्वप्रथम आकाशवाणी के सुनने वाले जहां तक हमारा आवाज पहुंचे आप सभी को जागृत है मेरा प्रणाम या राम राम सीताराम पहुंचे। खास करके रेडियो फान को जो मालिक हैं मैं उनके भूरी धन्यवाद दे रहा हूं जो समय प्रदान किया धर्म प्रचार करने के लिए। हम आप हर बुद्ध की तरह आज भी कितने आनंद ले रहे थे जहाँ पर संता जी ने रेडियो फाउन को माध्यम से मैं आपके अच्छे ढंग सेवा कर रहे थे उनको मैं भूरी धन्यवाद दे रहा हूँ। तो आकाशवाणी के सुनने वाले हर बुद्ध की तरह भी कुछ ना कुछ धर्म संदेश आपसे बीच में मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप जानते हैं कृष्ण भगवान के भक्त हैं जिनके नाम मीरा नाम से आप जानते हैं, जिनका नाम मीराबाई। मीराबाई की सेवा में बिना नाम की एक दासी रहती थी। एक दिन वीणा ने मीराबाई से पूछा तुम किसके साथ बात करते हो। मीराबाई ने कहा मैं तो गिरधर गोपाल के साथ बात करती हूँ। दासी ने कहा मीरा तुम प्रभु तुम ठीक ठीक बताना कि तुम प्रभु के साथ बोलते हो परंतु क्या प्रभु भी कभी तुम्हारे साथ बोलते हैं। मीरा ने कहा मेरा ऐसा कहाँ सौभाग्य है कि मैं गोपाल मेरे साथ बोले। मैं ऐसे लायक नहीं हूँ मेरे गोपाल कृष्ण मेरे साथ बोले। वाणी ने कहा उनके दासी ने कहा ना मीरा से वे बोलते नहीं तो पीछे तुम क्यों बोलती हो। तब कितने सुंदर बात बोलते मीरा ने मीरा बोलते तब मीरा ने जवाब दिया बोलते नहीं परंतु मुझको आशा है एक एक ना दिन मुझसे बोलेगा। मेरा आशा लगाते हैं अपने दासी से बोलते एक ना एक दिन जरूर मैं इसे बोलेगा। इस आशा से मैं बोलते हूँ मुझको आशा है कि मेरे श्री कृष्ण को दया आएगी और वे दो बरस बाद बोलते यानी दो बरस बाद या 12 बरस बाद तो बोलेंगे ही मेरे पाप अधिक है और इसलिए 12 वर्ष बाद भी कदाचित ना बोले परंतु मुझके दृढ़ विश्वास है कि जीवन के अंतिम दिन तो वो बोलेंगे ही। कौन बोलते हैं मेरा अपने दासी बोलते आकाशवाणी के सुनने वाले। इस पे ध्यान करना किसी मनुष्य से कभी आशा नहीं रखना और परमात्मा की आशा कभी छोड़ना नहीं। फिर से बात दोहरा रहा हूं इस पे ध्यान करना किसी मनुष्य से कभी आशा नहीं रखना और परमात्मा की आशा कभी छोड़ना नहीं, हम आपके लिए जाते हैं रामायण को। आप जानते मतंग ऋषि, मतंग ऋषि शबरी की, यानी मतंग ऋषि शबरी को परमात्मा आएगा ऐसे आशा देकर ब्रह्म लोक सिधार गए ना। शबरी आशा के ऊपर जीने लगे, परमात्मा की आशा रखनी ही महान सुख है। संसार के विष सुख को आशा रखना ही महान दुख है। आकाशवाणी के सुनने वाले, संसारी सुख भोगने की इच्छा ही महान दुख है। जिसके कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं, वही संसार में सुखी है। ऐसे सारा जीवन व्यतीत करो कि कोई सुख भोगने की वासना मन में जागे नहीं। वासना बुरी है, हम आप जानते हैं। वासना के अनुसार विष सुख ना भोगे जाए, और भोगो भोगा जाए तो मन अधिक विष में सुख भोगने की इच्छा रखती है, और मन याने मन चंचल याने चंचल बनता है। वासना जागने से तेज का नाश होता है। सुख भोगने के पश्चात हुआ कि मानव में रहने वाले बुद्धि शक्ति छिन्न हो जाती है। मन पर सदा भक्ति का विश्वास रखो। खास वाणी के सल किस प्रकार सबरी सेवा करते हैं। सबरी जी विचारती कि मैंने सुना है कि राम लक्ष्मण वन में जूता नहीं पहनते, वे तपस्वी होकर वन में फिरते हैं। वे बहुत ही कोमल है, वो बहुत कोमल है, उनके मेरे घर आना है। इसलिए घर को चारों दिशा में सबरी साफ सुथरा करते हैं। इस रास्ता से आएगा, कदाचित उस रास्ता से आएगा। इस मार्ग में सबरी माँ कहते, इस मार्ग में कीचड़ पड़ा है, ये ठीक नहीं है। समस्त दिन सबरी वहां पर अपने घर द्वार साफ सुथरा में, झोपड़ी जब आश्रम में रहते थे साफ सुथरा में रहते थे। जैसे हम आप दिवाली जो आते आकाश होने के सुनने वाले, और घर द्वार तो रोज साफ सुथरा हो है, लेकिन दीपावली जो आते हैं तो हम आप चारों घर द्वार साफ सुथरा करते। इस प्रकार सबरी माँ ने घर के चारों साफ सुथरा करते थे कि एक ना एक दिन हमारे प्रभु आएगा। सबरी यानी सबरी जी श्री राम के प्रतीक्षा करती, हमेशा उनके इंतजार करता रहा। कौन? सबरी माँ, कि राम जी के लिए सुंदर सुंदर फल लेकर आती। आज आएगा मेरे राम, ये आशा लेकर सायंकाल तक राम जी के प्रतीक्षा करते थे, उनके ध्यान करते थे। कौन? सबरी माँ। परंतु प्रभु नहीं पधारते, तब सबरी जी विचार करते कि अब तो अंधेरा हो गया ना, आज उनको आने की फुर्सत नहीं मिले होगी, अब नहीं आएगा। सबरी माँ देखो नाना प्रकार के मन जो है ना, तो मन बहुत चंचल है। हम आप सुबह जगते हैं तो मन क्या क्या सोच के बैठते, आप विचार करो। मन जो क्षण मात्र में, देखो हम यहाँ है, मन क्षण मात्र में सुरनाम में है, मन क्षण मात्र में कहाँ भारत में है, तो आप नहीं आएगा। मैं पापी हूँ इसलिए मेरे घर नहीं आते, अब तक मैं लायक नहीं हूँ इसलिए प्रतीक्षा दर्शन नहीं देते, मैं लायक नहीं हूँ इसलिए। देखो नाना प्रकार के मन क्या बोलते हैं सबरी माँ के, इसलिए मेरे सामग्री भगवान नहीं स्वीकार करेगा। राम जी के लिए जो फल एकत्रित किया होते, उनको सबरी बालकों को अर्पण कर देती। ऐसे भावना रखती थी कि मेरे राम बालक है। कोई गरीब इस पे ध्यान करना, आकाशवाणी के सुना ले, कोई गरीब आमे तो गरीब में राम जी के दर्शन करो, गरीब को भी फल देते हैं कि सबरी माँ, हर एक नन्ना सा बच्चा वहां देखते हैं तो मैया सबरी माँ फल अर्पण कर देते, उसमें देखते कि राम विराजमान है और गरीब को भी फल देती कौन सबरी माँ, कोई साधु संत आते तो उनको भी फल देती, और गांव में भी मेरे राम जी विराजते हैं, ऐसे निश्चय रख कर करके गांव के भी फल खिलाते थे सबरी माँ। सबरी माँ निश्चित रूप से चारों दिशाओं में देखते थे कि किधर से हमारा प्रभु राम आएगा, दो दो मील तक रास्ते में साफ सुथरा करते थे और सबरी जी श्री राम श्री राम श्री राम का जप करते हैं। इस विचार को आकाशवाणी के सुनने वालों, हमें आप परमात्मा सात दिन या सैफ दाखना, तो उसमें हम और 24 घंटा है, तो 24 घंटा में से कितने घंटा कितने मिनट हम निकालते परमात्मा प्रार्थना में। शास्त्र में लिखा है कि मानो के 24 घंटा फांदी फिर यूरन में से दरियन तो यूरन 23 घंटा 55 मिनट जो है खाए पीने में काम धंधा में हम लगते हैं। कहा गया कि 5 मिनट मानो बहुत मेहनत से निकालते भगवान को ध्यान में, हमारे ऋषिगण फरमेने फुल्द करके रखा है। आप सोचे कि बात तो नहीं पंडित, हम तो रोज 1 घंटा आधा घंटा भगवान के प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारे ऋषि ने फरमेने फुल्द करके रखा कि मानो के 24 घंटा में से 23 घंटा 55 मिनट काम धाम खाने पीने में हम व्यतीत करते हैं, बहुत मेहनत से 5 मिनट निकालते हैं, लेकिन सबरी माँ सुबह से शाम तक श्री राम के जप करती है। बहुत वर्ष तक सबरी माँ ने इस प्रकार दिव्य तपस्या की ना, तब करते करते अब सबरी बहुत वृद्ध हो गए। सबरी महायोगिनी थी, शरीर भी वृद्धावस्था आई, शरीर दुबला हो गए, परंतु आशा बनी हुई थी कि गुरुदेव ने कहा है ना, कौन गुरुदेव, सबरी माँ के गुरु क्या नाम मतंग ऋषि गुरुदेव ने कहा है कि मेरे घर राम जी पधारेंगे, श्री राम दर्शन के बिना मैं नहीं मरूंगा, उन्हें दृढ़ विश्वास था श्री राम दर्शन के लिए सबरी जीवित थी। सबरी रघुनाथ जी के प्रतीक्षा कर रहे थे, मन में निश्चय था कि श्री राम दर्शन करने के पश्चात मुझे प्राण छोड़ना है, श्री राम आएगा अवश्य आएगा। मैंने सुना है कि अब इस ओर पधारे हुए हैं, परंतु मैं उनके आमंत्रित देने किस प्रकार जाऊंगा, मैं तो नीच जाति की भीलनी हूं, कौन देखो, मन में सोचते सबरी माँ। सबरी माँ जी ने मन में विचारते कि मैं क्या लायक हूं, मैं जाति के भील हूं अधम हूं, मुझे ऐसा लगता है कि गुरुदेव ने कहा है उस प्रमाण से राम जी यहाँ पधारेंगे तो अवश्य, परंतु मेरे आश्रम में नहीं आएंगे, बड़े बड़े ऋषि यहाँ विराजते हुए हैं, वे उन लोग उन्हें ले जाएगा, मेरे घर कहाँ से आएगा, परंतु राम जी जब किसी ऋषि के आश्रम में पधारेंगे तो तभी मैं उधर दूर से उनके दर्शन करूंगा, मैं अधम जाति के भिलनी हूँ, क्या प्रभु मेरे यहाँ पधारेंगे और साथ ही साथ सबरी को ऐसे लगने लगा कि श्री गुरुदेव ने मुझे आशीर्वाद दिया है इसलिए जरूर आएगा। आकाशवाणी के सुनने वाले, हमें अपने गुरु पर विश्वास करना, कुछ कोई गुरु मंत्र दे दे, लेकिन आज कहाँ उसे गुरु मिलेगा, इस पे ध्यान करना है। पानी पियो छान बीन कर करके ना, जो जल पियो छान बीन कर करके कोई कोई गुरु बनाओ तो उस पे विचार करना चाहिए कौन हमारे गुरु हो सकते हैं। कहने के बहुत है आकाश सोने का, लेकिन समय के अंतर्गत युवाणी द्वारा अपना परोचन ग्रहण करने जा रहा हूँ। हरि ओम, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामे, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदु भाग्भरे। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम।

मेरे प्यारे सुनने वालों, यहाँ से हम सब मिलकर श्रवण की है सुंदर सा कथा श्री पंडित राजकुमार महात्म जी के मुखारबिंद से, जो अपना मूल्य समय निकाल कर और उपस्थित हो जाता है हर बुधवार की तरह हम सब की सेवा करने के लिए। पंडित जी को हार्दिक से धन्यवाद किया जाता है और एक मंगलमय शुभमय दिन आपका भी होवे। साथ ही हमारे सभी प्यारे प्यारे सुनने वाले

फोर, ट्वेल्व फोर, हालफ तीन हो चला है। आज 1 जुलाई है, सातवां महीना में हमने कदम रख दी है। छः महीना देखते देखते यूं ही गुजर गया है और आज से सातवां महीना का आरंभ हो गया है भी। तो जो हम पिछले 6 महीने में ना कर पाए हैं, तो यही आशा उम्मीद है कि आने वाले दिन जो है इसमें हम ज़रूर अपना शुभ शुभ जो है अच्छा अच्छा मनोकामना है फरलांगस जो है उसे हम आगे में चल के ज़रूर से पूरा करें। आप हिम्मत ना हारें और अपना कदम आगे बढ़ाएं। बैठ के सोचने से ही, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है, सोच कर और उसे प्रयोग करें। Beweging inbrengen en dan kunt u dan het resultaat op den duur ook van zien. जैसे कहते हैं कि बहता पानी में उसमें बहुत सारे सूरस्तोफ रहता है, बहता पानी में सूरस्तोफ रहता है और जो पानी बंद रहता है, जो उसमें बहाव नहीं है, वो समय के अनुसार उसमें गंदगी हो जाता है, स्मेल आ जाता है भी। वैसे भी जब हम यात्रा पे जाते हैं, अगर आप अकेले हो या पूरे परिवार के साथ यात्रा पे जाते हो और वापस आते हो 3 हफ्ता के बाद या 2 हफ्ता के बाद, घर पर कोई नहीं है, तो ये भी कहा जाता है कि अगर 2 हफ्ता के बाद आप आओ, 1 हफ्ता या 2 हफ्ता के बाद अगर आप घर पे आओ या 3-4 दिन के बाद अगर घर पे आओ, घर पर कोई नहीं है, तो अपना घर का नल जो है, क्रान जो है, उसे थोड़ा देर के लिए खोल दे ताकि जो रुका हुआ पानी है वो बह जाए। क्योंकि कहते हैं कि रुका हुआ पानी में उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाता है, अगर वो बह जाए तो फिर आप इस्तेमाल करना तब एंती खून फर्सी कर एंड वी टी ओग दाती खुसोन कंसेंट।

बेशक आपने पुकारा और हम चले आए। मोहम्मद रफी जी की आवाज में साथ दे रहे थे सुमन कल्याणपुर। मैं देख रही थी कौन सी फिल्म से है। फिल्म का नाम राजकुमार, राजकुमार फिल्म से ये सुंदर सा गीत निकाला गया है आप ही के लिए। याद न जाए बीते दिनों की, मोहम्मद रफी जी के दर्द भरी आवाज में हम सुनेंगे।

याद न जाए बीते दिनों की, मोहम्मद रफी जी की आवाज में म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जय किशन और गाने के लिखक है शैलेंद्र जी। फिल्म का नाम है दिल एक मंदिर, जो नेहन 3/63 तक में पिक्चराइज किया गया है। नियत कितने भी अच्छी हो, दुनिया आपको आपके दिखावे से जानती है। और दिखावा कितना भी अच्छा हो, ऊपर वाला आपको नियत से जानता है। और ये एक खास बात है कि विश्वास करने से पहले लोगों को अच्छी तरह परख तो ले। क्योंकि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां नकली नींबू पानी यानी कि लिम्का स्प्राइट से आपका स्वागत होता है। और असली नींबू पानी हाथ छूने के लिए दिया जाता है। तो विश्वास करने से पहले लोगों को अच्छी तरह परख लीजिए।

मेरे प्यारे सुनने वालों, आप इस गीत के जो आखिरी कमाल सुने ना, इसके बनाने सजाने में बहुत मेहनत लगता है, सुनने में इतना आसान इतना अच्छा लगता है। फिल्म का नाम कश्मीर की गली, कश्मीर की गली रफ़ी और आशा भोसले जी की आवाज़ में। लायरिक्स गीत का लेखक है बिहारी जी और म्यूजिक जो इसमें दिया है ओपे नैयर। स्टारिंग फिल्म के स्टार कास्ट जो है शमी कपूर और शर्मिला टैगोर। जिंदगी जिंदगी वो हिसाब है मेरे दोस्तों कि जिंदगी वो हिसाब है जिससे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरे दोस्तों मेरे भाई बहनों, अपने आज में ही सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें।

जगजीत सिंह जी की आवाज में यहाँ से श्रवण की है कि जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। मैं भी यही कहती हूँ कि जिंदगी में जरूर से मुस्कुराते ही रहना, कि जो गम भी आए तो वो आपके मुस्कुराहट देखकर और जल्दी से रवाना हो जाए।

0: चलम लापरवाह से निकाल दिया गया है, कोई भी मेरे दिल में तो आया था। मिथुन चक्रवर्ती जी के आवास में हम देखे तो ने चंद्रानी मुखर्जी के आवास में साथ दे रहते किशोरदा बप्पी लहरी जी के साज और संगीत में।
1: सिर्फ नाच गाने की बात होती तो मैं और नीलम बहुत काफी हैं, लेकिन जैसा कि आप फरमा रहे हैं कव्वाली, कव्वाली के लिए सामने मुकाबले पर को होना जरूरी है।
2: वो भी है।
0: इस बार हम सुनेंगे किशोरदा जी के आवास में साथ दे रहे इस बार मन्ना दे जी।
3: जैसे कुत्तों के हाथों मरना मेरी शान के खिलाफ है हिलाल।
1: और शट अप सर, मुझे एक मौका और दीजिए।
2: तुम लोग अगर जीना इनको कव्वाली के मुकाबले में हरा दो तो शायद मैं तुम्हारी गलती माफ। तुम तैयार हो जी नाइन?
3: मुकाबले के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, चाहे कव्वाली का चाहे जिंदगी और मौत का।
0: जी नाइन मतलब मिथुन चक्रवर्ती।

किशोरदा मन्ना दे जी की आवाज़ में। फिल्म का नाम सुरक्षा। जी हाँ, फिल्म का नाम सुरक्षा। 1993 में ये पिक्चराइज किया गया है। इसमें कलाकार है रंजीता और जी नाइन, हाँ जी नाइन, मिस्टर मिथुन चक्रवर्ती।

0: हंसी है। इस बार हमने सुने हैं मोहम्मद रफ़ी जी के आवाज़ में कितनी खूबसूरत से वो गाकर और सुना दी है दिल छू जाने वाले आवाज़। फिल्म का नाम ख्वाब, नीखन तीन तख तख में ये पिक्चराइज किया गया फिल्म है और इसमें भी एक बार फिर ये फिल्म में कला दिखाई अपने मिथुन चक्रवर्ती जी साथ दे रहे हैं रंजिता कौर। फाउन रेडियो पे हम सब चुन हैं आज खास तौर पे कुछ मिथुन चक्रवर्ती जी के गीत हम यहाँ आपके लिए पेश कर रही हूँ।
1: अरे मैम साहब, अभी तक तो मेरी शादी नहीं हुई, इसलिए मैं हर लड़की का बॉयफ्रेंड हूँ।
2: न्यू ईयर ईव को तुम्हारी सगाई मेरे साथ होने वाली थी और कमला के साथ भी।
1: अरे बाबा, मैंने कहा ना मैं कुंवारा हूँ, वैसे मैंने एक चांस लिया था, अब तो फैसला आपके हाथ में है। देखिए, आप दोनों सहेलियां हैं, आप में से कोई भी मेरे साथ सगाई करने के लिए तैयार हो जाए तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझूंगा। वैसे पसंद आप कराटे और भी कुछ सीखा है?
2: बहुत कुछ सीखा है, लेकिन तुम जैसों के लिए इतना काफी है।
1: और चाहिए?
2: नहीं।
1: फिर हाथ जोड़कर कहूं मैं हार गई?
2: मैं हार गई।
1: लाओ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ।
2: शट अप, तुम मेरी जान लेना चाहते थे, उस क्लब वाली लड़की का खून तुमने नहीं किया है।
1: मैं अगर किसी का खून करना चाहूँ तो वो बच नहीं सकती, ये तो सिर्फ एक नमूना था, वो भी इसलिए कि लड़की होकर मर्दों पर हाथ उठाना बहुत बुरी बात है डार्लिंग।
2: मैं तुम्हारी डार्लिंग वार्लिंग नहीं हूँ।
1: कितना बदल दो, ब्याह का मतलब डार्लिंग होता है।
2: तुम जैसा आदमी तो मैंने आज तक नहीं देखा।
1: वो इसलिए नहीं देखा है कि मुझ जैसा आदमी लाखों हजारों में एक ही, दो चार मुलाकातें बढ़ जाएगी, फिर तुम गाना गाओगी।

0: किया तो ठीक किया।
1: हाँ प्यार तो करना चाहिए और ठीक किया कि प्यार किया तो ठीक किया। आप भी पिथौरा से प्यार कर

स्मिथ द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। फिल्म का नाम कर्तव्य। इसमें कलाकार है धर्मेंद्र जी और साथ दे रही है रेखा जी, धीरे धीरे बोल कोई सुन न ले मुकेश जी और लता जी की आवाज में।

धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले मुकेश जी लता जी की आवाज़ में साथ मिलकर सुना। देखिए धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, फिल्म का नाम गोरा और काला पिक्चराइज किया गया है। नेखंतिन तुवेयन सीफन तख में स्टार कास्ट इसमें है राजेंद्र कुमार, हेमा मालिनी और रेखा जी। लेकर चलते हैं सुनने के लिए आजा तेरी।

राजा तेरी याद आई, आप कहाँ हो। लता जी के आवाज में साथ दे रही थी मोहम्मद रफी जी, फिल्म का नाम चरस। धर्मेंद्र जी का एक सुंदर सा फिल्म है, कलाकार इसमें है धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी जी, अरुणा ईरानी जी। पतझर सावन बसंत बहार,

संत बहार फिल्म का नाम सिंदूर। फिल्म सिंदूर से ये सुंदर सा गीत कि पतझर सावन बसंत बहार निकाला गया है। नीकंतिन सेवनन तख्त की ये सुंदर सा गीत, ये फिल्म यो पिक्चराइज किया गया है लता जी के आवाज में और मोहम्मद अजीज के साथ। इसमें जो ये दोनों ये सुंदर सा गीत हमको सुना दी है। मौसम भी बदलते हैं वक्त के साथ, इंसान भी कुछ कम नहीं। दूर तक छाए थे बादल और नहीं और कहीं छाया ना था, इस तरह बारिश का मौसम कभी आया ना था। मुझे ऐसा ही जिंदगी का हर एक पल चाहिए। मुझे ऐसा ही जिंदगी का हर एक पल चाहिए, प्यार से भरी और संग तुम चाहिए। हमारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना है और तुम्हारे शहर का मौसम भी बड़ा सुहाना है लगे। एक शाम, एक मौसम, एक पल चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। फिल्म एतबार से आपके लिए निकाला जाता है। किसी का इंतजार, किसी न

0: दोस्तों, जिंदगी सचमुच एक हसीन इत्तेफाक है। अगर इत्तेफाक ना हो तो मोहब्बत ना हो, शायरी ना हो, संगीत ना हो। अभी जो गजल मैं आपके सामने पेश कर रहा था, कभी उसमें एक आवाज और भी शामिल थी। उस आवाज की मलिका नेहा आज इस वक्त हमारे बीच हैं। दोस्तों, मैं आप सब लोगों की तरफ से उन्हें गुजारिश करूंगा कि वो एक बार फिर मेरा साथ देकर इस अधूरी गजल को पूरी कर दें और शाम को अमर कर दें।
1: ये क्या कह रहे सागर?

1985 की ये पिक्चराइज किया फिल्म है। इसमें राज बब्बर, डिंपल कपाडिया और दीपक परेशर अपना साज और संगीत में ये कला दिखाई है। खामोश मोहब्बत भी कभी कुछ कह जाते हैं कि खामोश मोहब्बत, खामोश मौसम भी कुछ कह जाता है और मोहब्बत भी कुछ कह जाता है। सन्नाटा बनकर, सन्नाटा बनकर दिल के पास रह जाता है। आज का मौसम बड़ा सुहाना है, आज का मौसम बड़ा सुहाना है, दिल में तेरा प्यार का तराना है। लॉन्ग ड्राइव पे मेरे साथ चलोगे क्या, लॉन्ग ड्राइव पे मेरे साथ चलोगे क्या, ये

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जांच, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फाहुन की सुनने वालों को हमारा एक बार फिर से राम राम, नमस्कार, प्यार भरे लाभ, सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। आज का देश और विदेश के समाचार सुनाना है हमारा काम, यही है हमारे मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम। दोस्तों, आप लोग को तो पता चल चुका होगा कि यहाँ से हम अपना सुरीनामी देश का और विदेश का समाचार भी आप लोग को सुना देंगे। तो हमारे प्यारे प्यारे मौसीलोन, मौसालोन, नानी लोन और नाना लोन, आजी आजा और परिवार लोग, आप लोग के पता है कई साल से हम समाचार को और सुनाते हैं और यहाँ पर बताए गए हैं कि आप लोग को शायद याद होगा कि 2023 में, यानी 2023 में, हाँ ना 23 में, 2023 में पीकिंग सारोन में तो जाने आदमी ब्लॉक ले ले फ्राखवाखन पितृक पे जांत रहा और वहाँ पे बहुत जबर सबन अक्सी होरी कलेरा डाम बंद कर दे रहा और कितना ट्रैकर में आगे लगा दे रहा, लकड़ी जर गया रहा, बहुत आफत मचल रहा। ये पिकिंग सरोन के बात है मई 2023 में हमारे जनता, और जो शायद कोई न्यूज ना जानत हुई होश ना हुई तो तरी से हम बताई दे कि हुआ पे पिकिंग सरोन में भैया जगवल भी भइल है, स्कौतु पहुँचल है, जिसकौतु पहुँचल तो ओसी के आदमी दागे सिपाही के और सिपाही दागे उस सब के भैया, और बताए गए है कि वहाँ पर स्कौतु दागिस दुई आदमी मर गए रहा, तुई लेकन वहाँ पे सबन ले गए रहा लेली तौरप के पुलिसी ब्यूरो के मारतीवारियों में धरल रहा। और वहाँ पर दोस्तों दो आदमी मरल रहा, पिकिंग सरोन एगो दुर्पू हैगा दौरब खबीत में, जहाँ पे ग्रासालको हैगा मारी पास तुंग है बहुत ऑन रिस्ट खड़ा वहाँ पे दोस्तों है ब्लेक द त्वी वेरक नीम ग्रासाल को खैसल स्वारन दूर ओम स्तांदल लिंगन खैसल कल रहा दूसर कोई इदुई को कम करतन के ग्रासालको के दोस्तों। और बताया जैसे नाम से पुलिस ऑफ एन मोमेंट फर्स्ट क्राइम फेस्टक तेघन, और बोले ग्रासालको के दुई को आदमी के समान का बोले हैगा खैसल कल रहा हमारे जनता, और बतावे हैगा उही में दगवल भइल है ओसी से बंदूक, ऐसी से सिपाही के बंदूक, और दुई आदमी ओमा मर गए रहा दोस्तों। और जब मर गए रहा तो कर बारे में जड़ जबरदस्त साग गए फोर द रेक्टर कि सिपाही लोग के चाहिए बन्न होवे के, तो एमा इन द दाद भैया स्कूतु लोग के साग गए है दोरो। और जो नरमियन दुई को मरल रही एगो नाम रहा मार्टिनस वाल्फियाखर और एक वक नाम बा इफानेल्डो डेगस्टील, तो दोनों सिपाही दाग के मार ढाले रहा हुआ दोस्तों। तो ओकर ना बस्तांतन जो रहा फॉर द रेस्ट लेके कि सिपाही लोग के चाहिए बन होवे के, तो एक बार में अब जाए के सखवा रोंत भइल हैं फॉर द रेक्टर सकवा गईल हैगा पुलिसी उपतरी ने पिकिंग सरोन सुरीनाम में, और चारों स्कौतुन जो रहा बस फ्राई खसप्रोकन हुई गए भैया चारों स्कौतु के, और रेक्टर फ्राई खसप्रोक कर दी से। और ये रेक्टर हैगा सिंथिया क्लेन बोले हैगा बवीसन फॉर क्लारिंग से मैं से अख्तर द बत्रोकन अखेंतन दार फो निस्त्रावर आठ मिला के रहा।
और बोले आंठों के फ्रई खसप्रोको हो गए हैं। बोले ओमदत इस सब दागी से उस सब के कि नोत वेर में रहा। बोले दगवल उधर से होत रहा इधर से भी होत रहा। यही के मारे में बोले द सेफन अखेंदर वर्दन फरदाख फन खबरई फन डिस्प्रोपोर्शनल खवेल्ट। बोले उस सब दागे रहा को उतन। बोले नानू उड़खरा दागे ओकर खात रेखतर इस सब के फ्रई खसप्रोको करी से। बोले इस सब नोत वेर में अपन के दागी से। बोले द फरदाख्तन वारन दोच लाख दुनु मर गए रहा स्वार में सांदंग में द दोत खफोलक एन दोत दो स्कुल ते लास्ट खलेक एक रूपल स्कूतों को पर कर ले रहा। फरवारलेक बोले 12 महीना के जहल का एस्ट मेट अन प्रूफ स्टेट फन 3 तेन आंसीन मार्टिनेस वॉल्फयागन सेन 4 अगेंटन फ्रई गस्प्रोकन फन अले फेटन इन द साक रोन इवाल्डो डेक्स्टिल ओर्डेल द रेखते दात गेन स्प्राका वास फन दोचला वेल अख्ते द रेखते बवीसन दात 3 अगेंटन स्कुल हानन अन दोत फन डेक्स्टिल। बोले इंदरदान ती तीन सिपाहियों के दागे से। बोले toch bewezen verklaring niet strafbaar volgens de vonnis was sprake van een noodweersituatie. De agenten hebben wel geschoten maar deden dat volgens de rechter binnen hun bevoegdheid als politieambtenaren gelet op het geweld en grimmige omstandigheden op dat moment mensen toch ja wat aanwegen. Die rechter, bolle hega, rechter kwam daarop tot ontslag van alle rechtsvervolging. Op de 10 sipahien bij wie dood door schuld bewezen werd gemaakt. Dat betekent dat het feit juridisch wel bewezen is, maar de verdachten daarvoor niet strafbaar zijn mensen. Toen doe het mee, Margera, via Rivaldo, Aurigo, Aure, Vibraam, Bataite. लेकिन सबके सिपाही छोड़ दी से हमारे जनता जने सिपाही ना रेख्तर सबके छोड़ दी से। बोले सब दागी से अपने बचाओ खातिन नोटवेर के। बोले ओशो दगल होतरा ऐशो दगल होतरा। बोले जैसे सिपाही ना दागत अपने मर जातो तो बोले उस सबका नोट साख रहा दागे के। और बोले मा दुई आदमी बोले मर गए है हमारी जनता। एक औरत भैया गई ले वैदम बॉस ब्रुक पे ना हबड़ा होत रहा नानी। गैला कूदे भैया गैला कूदे ऊपर से वैदम ओतो और ओतो ना बुताई से ओतो लेके गैला और ऑन बहेर ओतो हुआ छोड़ दे से और हुआ पे बताई गई है रात के वैदम बॉस ब्रुक के पास खुद गए है औरत मशीन ओतो के समय ना रहा बुतावे के। और 5 बजे सवेरे सिपाही गई है पुलिस ब्यूरो हरमान गुदिंग क्रीक 5 बजे मेल्डिंग पाई से कि वो ओतो वैदम बॉस ब्रुक पे है जो उनके मोटर ड्राई हुए है। और बोले बेटा आंस कम स्ट्रॉफन द वेस्ट इन आर auto pijs me bestuurder na pijs terwijl de motor nog draaide. De camerabeelden is volgens politie gekeken dat de bestuurder van de brug is gesprongen. Or hoe camera lagawale op de khan ke aurat ya pani me kud gaye hai lekin yahan pe nahi bataye gaye hai ki uska lash mila hai ki na. One bur ki pase kudiyo bhaiya ta kam me aasa hai ki tohara leik milega. तुम पाई तुलन जानो भैया एनपीएस में चल गए है गा। पहले रहा पुलिसी बोन सिपाही में रहा अब पार्लियामेंटारियर हो गए है गा। यानी कि पातो अतोम पाई पार्लियामेंटारी हुई गए एनपीएस के। और बोले इन सूरीनाम जी ओवर बस वर्गीकरण बस के कन। बोले सब्सिडी फॉर द ओवरहेड ऑनफांगन मार हिन बसन हैवन हियर अंडर फॉलन ओ पर्सन इन बिपाल फंक्शन बक्लेन। बोले एक एक गो आदमी लोग के बोले सब्सिडी मिले बोले के बस है ये ना आएगा। बोले कैसे हो सके हैं तो सन्ना में तो आदमी काम भी ना करे पैसा पावे भैया और मिस्त्रासी हुआ पे ऐसे बोल दी एक को बुन देख करे भाई तेज बखरोती महंदलिंग में। एक बारे में एक स्पूदक महंदलिंग आयल है बोलेगा फांद काल प्लुक वेत ओम दे इसे परसोनन अंत पकन की इसे परमेन के जहीं पकड़ाई के। बोले दे मांग नो आभी बस बोले सेंस यार एन दाग होनन वे दार फर्क्यूनिंग वर्दन फर्कोग। बोले बस है ये ना फर्क्यूनिंग बिका है। बोले अन मान नो आभी बस एन एक कांसो 20 फांस आनवेशन ये है मेंसे दी अन बरूप एरफान हैवन खमाग एन दारो मुद काल प्लुक वेत कोमन ओम दत वे मेंसन हैवन दी in de functie zijn gegaan, busvergunning hebben verkocht en
miljonair zijn geworden. Hoe ze vergunning aanvraag kerken. Of bus of vergunning. Sub maanden we. Of beter koe subsidie bouwen we. Bolle één persoon heeft 10 busvergunningen. En elke man ontvangt hij 10 maal de subsidie van mama Sranang. En dan. En de potisma erbari. Zei de NPS'er. Dat wil ik dat vergunningen bussen jena hem. Of beter vergunning maken, of vergunning wat bedden we, of subsidie op een dorp houden we. Volgens de politicus moet de regering beter gaan kijken naar de subsidiebeleid. En alleen degenen subsidiëren die dit nodig hebben, te bolle gaan. Atompai, or bolle DNA leden A.W. Jones en NDPK, or Ivanello Plein en PSK dienden in december al vorige week een wetvoorstel van ondernemen. Bolle hega bekeker bare me OWVV, zogenaamde kaalplukwet in het mogelijk moet maken en veroordelen volledig te ontnemen van de wederrechtelijke verkregen van voordelen. De Navia kaalpluk TL kaal plukwet dus amandarie bakke isap keke je ye kaal pluk kare want isap keke kariye bhaiya kaal pluk want hua pe je koi paisa paige to ke kuch hiye na paiye kunchi Suriname me tulo jano bhaiya kaal pluk wet naam hebben ze maar uiteindelijk wordt het niet meer gebruikt. ये बात है हमारे प्यारे प्यारे जनता आप देखो एनडीपी के बारे में ही एनपीएस और एनडीपी भैया अपने में बोले हैं एनडीपी बोले हैं बोले हैं बोले इन अन खसीन स्कूल टास प्रोजेक्ट एगो सरना में खोली से रखेरिंग सिमोंस और रिसलान के बोले सामन खोली से बके क्वालिसी खनोट एनपीएस आइटफूरन althans, dat is gebleken uit de discussie die aan mij, die dono partijen hebben gevoerd tijdens de begrotingsbehandeling. Op dit moment is het schooltaalproject ondergebracht bij het ministerie van een jeugdontwikkeling en sport. Op het eigen betaal waarvan de minister uit de gelederen van de NDP voorkomt. Op bollega to jeugd kedele waar de bekuw NDP kehen, waarvan NPS bij coalitie me ba. Op bolle begrotingsbehandeling met NDP AB Jones bolle he, ki schools projectwa jone onder minister Jos ke naam pe chahen jai ke. Op NPS bolle Jos ke minister NDP kehen, ta janta sojik NDP pa maanti se. Op bolle u NDP na maanti se ga. Bolle NPS Diana Leed, plein bolle he, bolle hega voor stelke die zega ki projecten, chahiga, 10 minister kes gezamenlijk chahiga uitvoer kereke, bolle hega minof ke, oro hega ukar, jane sociale zaken ke, also safo ke, bolle NPS beheert alle 3 minister hebben raakvlakken met de school tassenproject. Jos gaat over jeugdigen, minof over educatie en zo samen onder sociale zwakkeren. Alle 3 hebben de schooltassen nodig. Laten we onder 1 budget het project uitvoeren. Er komt dan een gezamenlijke aanvraagformulier waardoor er geen overlappingen plaatsvinden. Wat nu gebeurd is, is niet efficiënt en effectief, mensen. Dit is ठीक बात बोले है इथरो अपन जे भी पैसा लगाइए भैया यहां बताए गए है ई प्रोजेक्ट वा जोन हैगा ई लांटी के भैया देना लेट रुशाला कोस्टिनो से दैट है स्कूल प्रोजेक्ट बखोनन इस स्टेज इन बौतर के रेगिंग में 2010 में अब बोले हैगा स्पोर्ट एंड यूथ साखन बोल के altijd करी से द एनडीपी टू minister van onderwijs, maar hij bewust gekozen om het toen sportzaken te doen. Op de NPS-DNA Poetin Atompai niet terugvinden in deze stelling. 2010 is dat zo gebeurd, maar als we het evalueren, moeten we het toch achten anders doen. Bolle NDP, fractieliter, de absap kooi te mangen, op een naam bataan, bhaiya, ki hum batali bati, jone hum stem hua paai, to bhaiya, ye sab baat, koi na dekhe, janta ke chahi mile ke, chahi dekhawe ki ke baate hai, jone namua u banawe, aise batia hai. हमारे प्यारे प्यारे जनता अब देखो भैया
कहा बोले अमेरिका को हम जाए तो जाने हैं और यू बाइडन एक्स और प्रेसिडेंट रहा और ट्रंप के देखिए का बोले भैया प्रेसिडेंट ट्रंप के बोले हैगा अने डेमोक्रेटिक पार्टी खाला इन मैरीलैंड स्कैरप के अनफाल करी से 83 यार के हो गए जो बाइडन पॉलिटिकल रिफाल ने अंदर मीर अ नार्सिसिस्ट हैगा करप्ट एन लूसर बोली से बाइडन के ओके भैया है स्प्राग फ्राइडे आवंट इन द हनोवर टेनिस बेइनकम्स वार्मी हेल्थ वेट इन गस्कामल फॉर द डेमोक्रेटिक पार्टी इन आनलोप नार द टिसनटेसे वर्किसिंग फॉर नोवेंबर Op het AW in zijn ongeveer 10 minuten keer toespraak met Biden. Kijf puntelijstje Trump volgens zijn fout. Hij richtte zijn kritiek onder meer op de Amerikaanse opstelling tegenover de NAVO en Rusland. De bari baan Joe Biden 10 minuten mee. Of Trump ke boli se. Want hoe heb je die verkiezing wat je hier hoort na? तो ये सब बात हो रहा देखो भैया अमेरिका फुर अनफालन अमेरिका फिर अनफाल करी से ईरान के ऊपर आज रिएक्शन अनफाल ओपन स्केप एगो बोर्ड के ऊपर अनफाल करी से तो बोले अमेरिका बोले

और दोस्तों हम अपना प्रोग्राम को लेकर आगे को बढ़ाते हैं। तो जनता हम चलते हैं और आगे को तो हम जाते हैं। आप लोग जानो अबोपर भैया सांपी एगो है, अबोपर है तो भैया अबो पार्लियामेंटारियर है, एथकार सांपी है। बोले है जो फेनोमेन रहा, मतलब कि फेहा पे के और फेनोमेन रहा। बोले अब वही ओलीफांत और आए ओलीफांतन सिंड्रोम जो है। बोले अब पार्सल सिंड्रोम हुई है। बोले जो फेहा पे आएला तो बोले जितरा जितरा जगह रहा सब आदमी के निकार के अपन जगह धरी से। अब बोले ये रख रेंग वाल तो बोले एक को न तुरक द्राई करी से। बोले वारफान ओके चांदा सब द्राई करे के तुरक। बोले एक को बुन न द्राई करी से। जैसे कि बोले है वानिका में परमारिबो में बोले एरू रहा पहले मिनिस्टर रिक्वायर ऑन ट्विकलिंग के। बोले जो फेल उठावत रहा अब बोले ओके हटाई के बोले संतोखी बोले धर दे रहा ओवे में। अब बोले अब आल है बहेर रहा एरू के। अब बोले अफ खपाक ओके लगे से लेके ओवे के दे दे रहा। अब बोले ई का बोले है ई नौका रे खरिंग वन जो रेसलान सिमोन के बोले कुछ ना दराई किसे यामर खुनुंग मेरे खे दादिर बसलो इतने रखे प्रयुड सिमोन रेसलान नित इस फरांदर सेलफ ओ एरो के पैसवा जो रहा 407 तक मिलियन और एन एसआरडी और 66.5 मिलियन एसआरडी ओ बखरूतिंग में देरी से ओवे के कि ओवे फैलो अफाल करी। अब बोले हैगा मायन फन बर्मन इन डिस्ट्रिक्ट एन एक्सेट्रा बेड एरो तेज होरन। बोलो एरो में रहा जिस ग्राफ दैट वे डिड नॉट डोरखान में द सिंड्रोम। बोले हेड ऑरियन सिंड्रोम इज ऑफ मिस्किन वर्थ न्यू पार्स सिंड्रोम मा मिनिस्टर ओवी एरो के निकार के उधर देशवा एनडीपी फ्रक्सी परमेश्वर क्योर द इस फ्रक फान सांपी अफ स्टेल दैट एर गीन ग्रापा मुदन वर गमाक में द टू स्पेलिंगन ऑफ वर्डन अस पार्स सिंड्रोम अंडर इज इट एंड सुक एक डू हेड रिस्टक en laten we het rustig houden. Want als wij gaan beginnen, dan gaat het niet leuk zijn. Al dus, ja, Rabin Parmeester, ik ken haar moeilijk al, hè. Imam en minister, Michelle Huur van RO, merkte op dat de commissariaten inderdaad meer middelen nodig hebben voor vuilophaal. Zij stelde achter de oproep van haar partijgenoot te staan. Vuilophaal voor RO betekent vuilophaal in alle districten met uitzondering van Paramaribo. Bullen de middelen zijn niet toereikend. 1 miljoen SAD per commissariaat is absoluut niet toereikbaar. Ik deel ook de mening dat de vuilophaal weer decentraal moet plaatsvinden. Ik er waren mee bolle he. Want sabto mange paiso okkelige awe dosto. Van paiso okkelige aai. Tab dekho sab kaise apan kaam kare he. Aur sab doki sab uwi me dhar de raha. Aur uwi me se. Aur eru me. Aur isab terug na darai kaise. Uhi eru ne. Ka bolle uhi pe chhod di se. Ne. Uwi lage. Jo fail uthawe he. Bahal fafan. Paramaribo. Ma wanika ke badul kare he. Hamari janta. ये बातचीत है। तो अब हम जाए भैया, कोई भला कभी सोचे रहा कि रेसलान में ओ तो कितने लना मिली भैया स्कार सो ये है वांट एन फन द ग्रोस्ट एक्सपोर्ट रहा हस के और तेल के रेसलान जो हसत रहा वही अपन वापन जितना चीज किनत रहा मक्का करी से गा उक्रेन बनाई से लंबा लंबा लंबा लंबा ड्रोन बनाई से भैया जो हजारन किलोमीटर उड़ के जाए के अब उल्टा रेसलान के जो ओली रफिनार दे रही है सब दागे भैया इतना दागिश की अब एक्सपोर्ट छोड़ अब रेसलान के अपन तेल ना रही है पर जनता के लंबा लंबा रही है। जैसे हम लोग भी बहुत के तेज पे तेल स्कार से होते रहा कि हम लोग बेंसिन पंप लगे खड़ा होते ही तेल खात ऐसे ऐसे लंबा लंबा रही अब रेसलांत में हुई है। रेसलांत में भैया बोले है का ब्रांस्ट ऑफ द कॉर्टन दौर फॉर ड्यूरिंग द उक्राइन से अनफानन ऑफ अंडर मेयर रशियन ओली रफिनार द रेन। और बोले इस बेना ऑल रिश्यूज en inmiddels limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen.
ook in de hoofdstad Moskou staan lange wachtrijden bij de benzine stations. Maar ja, hou ik er maar mee. Poetin après verklaar kreeg. Oekraïne bolle het jablek toe jagalawaan naar Rokie. Hamlokke bolle tablek hamlokke door dagen. Want Oekraïne kake ze bij je banaan ze fabriek. Ja, op een eigen drone banaan zelf export kreeg lagen Oekraïne. Op parka parka banaan ze ga John Hajaren. John makkelijk ze Oekraïne ze urke. Oud jij ke op Rusland ke ulte bomba deer kreeg bij je. Toen op Rusland met crisis vergadering bij lega. Poetin hield daarom verlaag. Ik ook crisis vergadering kreeg ze. Op een hoge plaats betrokken over de brandstoftekorten. Op een hega. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Bollen bij de tankstationen staan wachtrijen mensen. Partijcongres. Poetin sprak vandaag ook op het congres van de partij Verenigde Rusland. Daar zei hij dat het land momenteel een moeilijke tijd doorbracht, mensen. Maar daar ook van leert ki is het probleem Oekraïne mee bhi hai bhaiya. Hua to thanda mein sabke ghar ke daagi se hazaran tipik admi maral hai Putin daagi se. Admi log ke ghar mein farwarming na raha, pani na raha, khana pina na raha. Ekar desh mein pukhri na kari se ka ki hua ab tel na hai. Ab president Putin baklaag kare hai. Ook over de druk van westerse landen die zijn land sancties opleggen. Auro kabule hega en Europa bhi sancties aflek karisega. Rusland mee Amerika bhi herstellen de afgelopen week weer sancties tegen Russische olie. Die sancties waren tijdelijk opgeheven toen er door de Iraanse blokkade van de straat Hormuz geen olie vervoerd kon worden. De EU versoepelde de sancties overigens niet. Poetin toespraak kwam enkele uren na de Oekraïnse drone al van in de regio Krasnodar mee. Al hoe ik het met Maralwi heb. Brand uitbraak in een raffinaderij. Oude Zelensky Oekraïne kebolehega. Bolehe bekend dat ook een raffinaderij in de regio Jarolas 4 was aangevallen. We zetten onze operaties voor die het vermogen van Rusland verzwakken om deze oorlog te voeren. Schreef Zelensky. Obole elke lange afstand aanval is een vermindering van de middelen die de Russische oorlogsmachines heeft en een nieuwe stap richting vrede. Enkele dagen geleden Zelensky aan dat hij een plan voor een aanvalscampagne van 40 dagen had goedgekeurd om Rusland te dwingen. Bole dwingi karehe ki tu jagarwa rok hem lo kelege se. Bole nee hem lo doro daga baki jagarwa na roke bhaiya oje na rokyo. तो अब तो तरी मनी तेल मिले है उहु ना मिली तब तो आदमी भूखे मरी दे स्वामी तो और इस्लाम अब दोरो लड़े है अब देखो भैया ती द्रियन फाइव तक को आदमी के पकड़ी से फ्रांकराइक में जोन इस के अंदर मिस ब्रेक मटेरियल डाउनलोड कर रहा फ्रांकराइक में भैया और फर्स्ट प्राइस कर रहा 33 आदमी को 37 से 79 यार तक बतावे डाउनलोड कर रहा kinderpornografische bestand op het internet. Dat is gemaakt door de beruchte Australische pedoseksueel Peter Scully. Bolle op gedownloade bestanden zijn beelden te zien van martelingen en verkrachting van 3 kinderen. Het gaat om 2 meisjes van destijds 11 en 12. Ego 18 maanden keer. Obbele de beelden werden in 2012 door een Scully gemaakt op de Filipijnen. Het materiaal circuleerde 14 jaar rond op het dark web. Op het eigen dus de 52-jarige Ukabena staat bekend als een van de ergste kindermisbruikers van deze tijd. Hij werd 2015 Filipijn met moeke pakkalise zijn. Oké, gevangenisstraf en mensenhandel. Oude verkrachting van minderjarigen kwam hij 2022 nog 129 jaar gevangenis bovenop. Ook zijn Filipijnse vriendin en 2 componenten werden schuldig bevonden aan kindermisbruik. Obolege opsporingssoftware download in Frankrijk werden gedetecteerd met hulp van Amerikaanse opsporingssoftware. Het zogenaamde Chill Protection Systeem. De arrestatie vond plaats in het departement. Obolege de speciale afdeling van de politie is in onderzoek mensen. Toen je iets in Frankrijk waren mee.
तो हम बोले आप लोग को हम बताई कि कैसे यमी क्रांत भैया भगे मेरी अफ्रीका के साउथ अफ्रीका के कपड़ी लोन भगे दसवा छोड़ के भैया मिखरांतन बोले हैगा स्पानिंग अराउंड द इलिखान मिखरासिस आइट अफ्रीका लोपस नेल ऑफ न्यू अ न्यू एंटी मिखरासी बवीकिंग एज दैट मींस सोंदर गेल्डिग वर्ब्लेवर्स कुनन हेड लैंड uiterlijk 30 juni verlaten in de verschillende gebieden worden huizen van migranten in brand gestoken en winkels geplunderd migranten uit onder meer Malawi Mozambique en Zimbabwe slaan of vluchten Zuid-Afrika mee. De regering van Mozambique meldt dat 5 Mexicaanse burgers zijn gedood. Oude 29-jarige Admi Bhi. Toen hua persoon bhag-bhag tu jane hai. Jaise Bangladesh ke Admi. Jaye India mein lukaan raha bhaiya. Jab se Modi sarkar aaye le sab bhangle hai. Aise hiya Frankrijk jane ki Zuid-Afrika ke baatcheet ho raha hai. Frustration arme weken. Betawe demonstratie vooralsnog beperkt van omgaan zijn. तो ये बात है साउथ अफ्रीका के दोस्तों कि वहां पे अब सब अरमियन के भागे के है। तो हमारे प्यारे प्यारे जनता अब तेल के प्राइस साका भैले भैया बाकी यहाँ तो आज कोरोत फिन दगा उल भैल है तो बोले दालंद ओली प्राइस बीट फॉर लिफ्टिंग मार ब्लेव क्रूशियल फॉर इकोनॉमियन सो आज गुयाना त्रिनिदाद एंड सुरीनाम बोले ये तेलवा सस्ता जाए के देशों के कम तेल को मा आए बोले ना ऑन्टविकलिंग जो इंटरनेशनल तेल के बारे में बोले इकोनॉम बोले गायना त्रिनिदाद तो वेको बोले तू कॉम्स तक जो तेल उतरनामे मिले है बोले स्पानिंग है रोंद स्ट्राद हॉर्मुस में बोले लेकिन अफ द नेमन की ओली ट्रांसपोर्ट ग्रोथन देर से हरफात बोले ये तेल ऑन फिन जाए लगल है तो बोले प्राइस सका हुई से ओली प्राइस इन द अफ्गलोपन दागन तुरक फालन नार द नीफो फॉर द recente crisis in Midden Oosten bole je tel wat cool je is as taut is pa cha la marai pe bhaiya de kabul oli mark internationale ke forsichtig bole hai bole amerika iran mukhlak bole fino elkaar gesprek begeil hai tegelijkertijd blijven beleggers alert omdat straat van Hormuz waar ongeveer 1/5 van de wereldwijde olie export passeert een van de belangrijkste knelpunten in de mondiale energievoorzieningen en blijft elke verstoring van de olieprijs opnieuw sterk doen oplopen mensen. Toen de hoge bijaan te lopen bij het nieuws aapelijke betaald heeft Amerika vandaag ik zoek er deze jane Rusland en jane ki Iran mee. Dus mogelijk dat die olieprijs weer omhoog gaat. Alles is mogelijk mensen totdat die oorlog is. एक बाप और बेटवा के बात है भैया एगो नीदरलैंड्स एंड स्पेन्स पुलिसी एगो फिर फिर तक यार के आदमी के और एगो ट्वीन ट्वीन तक यार के ओकर बेटवा के पकड़ी से ये सब ड्रग्स हैंडल करता पैसा वेतवास करता भैया बपुआ के स्पाई में पकड़ी से बेटवा के हालात में पकड़ी नीदरलैंड में बपुआ भैया स्पाई में से बन होके खोजत होके घरवे में जाए के पकड़ी से तो यहाँ बताए गए हैं सर रेस द फाक इज स्पाइन जाना था लुक्स लीफ हमारा सबके भैया और बोलेगा नीघ ने फिर तक यार का रूर मौन पे रहता और एक एन अंतविन तक यार का फ्राउ अब का पाक ओक में से दानास वेट न फर्दाख्त इन बेल की ओक आन खाउदन ते इस अब के पैया ऑनकेफिर 5 मिलियन रहा फिर पंदन में वार्ड फन ऑनकेफिर 5 मिलियन दार वेट न 5 फुर्तेगन अलस इस बेस्लाग गनोमेन नीदरलैंड trof de politie ook contant geld van 1,5 kilo goud aan. Spanje nam de politie meerdere telefoons in beslag. Obolega 5 personen worden verdacht, mensen. Obetawe uit witwassen van criminele gelden. 3 in Nederland. Opgepakt verdachten worden 2 juli voor gelijk natuurlijk, mensen. Zo gaat het een beetje. Kala dhanda kariyo. Obeko Iran ja, pin Qatar mee. Gesprek kare. जा है गस्प्रेक करे भैया कतार में वूस दाख के नर कतार ओम त प्रातन कि जितरा उ सब के तखूत फॉर फ्लोर भइले चाहे सब के छोड़े के द सेन द वर्ड फॉर द इनांस मिनिस्टर बोले है स्टीव विटकोफ अब बतावे मंगलवार के समान आए कतार में और हुआ पे समान बातचीत करी का मैं ईरान मेल द रखेनिंग फॉर द इमीरात
Onder de bemiddelaars is premier Qatar Mohammed bin Abdul Rahim El Thani. En Qatar speelt net als Pakistan een belangrijke rol in de relatie tussen Amerika en Teheran. Zo exploiteerden de twee landen samen een groot gasveld onder de Persische Golf. Mensen, de Abdeko Kaisi Huehe or Kaisi Nahue Margenta. To Yebate, Hamare Piare Piare.

आखिरी समाचार आप लोग को सुनाएंगे भैया, सूरीनाम की ओर हम जा रहे हैं। फरियारी हुए भैया तो खबाक कटा है, खबाक कटा है सूरीनाम में बोले तार्थ कर कटा है। और यहाँ पे एगो आदमी अपन औरत और बिटिया के काटार दाख के रोज भैया ये बातचीत हुए है, मेसांदल भैल है, ये मेसांदल भैल है भैया। फरियारी रहा एक बिटिया भैला 18 बरिस के, तो ओकर फरियारी रहा तुतली फौ कनाल वेख के बातचीत है। एगो त्वेन फे तक यार के औरत के और त्वेन त्वेन त्वेन तक यार के बिटिया के बाप या आदमी भूखी से छुड़ी से भैया पहले तक ताकी भैल है, वो द विस्लिंग भैल है, ट्यूशन द फ्रॉ एंड नमान उतरे में एस्कालेर हो गए झगड़वा इतना जाना कि छुड़ी से अदमिया औरतिया के भूखी से और बोले बिटियों के हाथ में भूखी से दोनों गैल है भैया और गैल है अने काम बोले हसी कौन हैस में और बोले अख्तिन यार रख दिया रख वास एफनेल उकर 18 बजे के फ्री दिन भी आयला ओह सब ऐसी दिन तो हमें मांग के ओह सब में सांदल भैल है ओह सब के चोट लगल है। तो तू ये फिर तक यार रख औरत 22 बरिस की बिटिया एम्बुलेंस सबके ले गए है गांड फ्रॉ लिपस्टिक वंदन ऑफ ऑन हर बीन एंड रे मार डॉक्टर वेन इन हर आर्म खस्तोकर ओवर द एनस्ट फान इन फॉर वार्निंग इज फॉर आल्सो नीड बकेन ना द इंसिडेंट फॉर verdachte de plaats hij reed weg in de grijze Toyota Harrier van zijn vrouw over het tegen auto leke al uitgelegd hij. तो दोस्तों इसी गीत से है हम आज के समाचार आपको जो सुनाए हैं और खत्म करते हैं। 1 घंटा करीब हो चुका है दोस्तों, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम नमस्कार और प्यार भरी अदाब। सत श्री अकाल जॉनी नंबर 1 है हमारा नाम।

कोई बता दे ये दिल है यहाँ, और दर्द भी वही होता है दोस्तों, जिसका दिल होता है उसका दर्द भी वही बताते हैं कि कहाँ होता है। और ये फिल्म मैं चुप रहूँगी के ये गाना हमने निकाला है, सुनील और मीना कुमारी का ये फिल्म है दोस्तों। और अपना प्रोग्राम को हम अगला गाना की ओर जाते हैं, मस्त भरी पुराने गाने की ओर हम आप लोग को सुनाएंगे। लता जी और मोहम्मद रफी जी क्या गाया है, शमी कपूर का ये फिल्म प्रोफेसर है, और ये गाना मैं चली आप सभी लश्तराज के लिए है जो तार करते हैं।

और मैं चली और कहाँ चली, आप तो अपने जानते हैं कि कहाँ चली। और लता जी और मोहम्मद रफी का ये गाना फिल्म प्रोफेसर से हमने निकाला है और इसमें काम किया है शमी कपूर ने ये फिल्म में। दोस्तों और अगला गाना की ओर हम चलते, मस्त भरी गाना हम आप लोग को आज के प्रोग्राम में सुनाएंगे। आप तो जानते हैं दोस्तों पुराने गाने में और कितनी मजा है। कहते हैं कितना हसीन है मौसम, और मौसम कब हसीन होता है जब अगर आप के दिल में कुछ गुनगुनाते हैं, आपके पेट में कुछ खुजली होता है, तब चाहे बारिश के मौसम भी होगा, चाहे जो भी मौसम होगा, लेकिन आपको हसीन जरूर लगेगी। फिल्म आजाद का ये गाना है जो हम आप लोग को अभी सुनाएंगे। दिलीप कुमार मीना कुमारी ने इस फिल्म में ओल्ड रोमांटिक हिट्स दोस्तों, कितना हसीन है ये मौसम।

अगर जो आप के साथी जो है और वो जो खूबसूरत है तो मौसम के ये खबर हो जाता है, तो मौसम जो भी होगा वो आपको अच्छा लगेगा। फिल्म आज़ाद का ये फिल्म नई खतीन 5x5 तक का दिलीप कुमार मीना कुमारी ने इसमें काम किया है दोस्तों। और हम आगे को बढ़ते हैं, फिल्म तीसरी मंजिल की ओर हम जाते हैं। ओ हसीना जुल्फों वाले और जाने कहाँ, इसमें शमी कपूर, हेलन, आशा आशा परेख इसमें काम किया है दोस्तों। रफी जी और आशा भोसले आपको क्या सुनाते हैं, आओ मिलके हम दोनों, हम सब मिलके सुना जाए।

बसे ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, और आपके जुल्फों भी क्या इतनी सुंदर है। हमारे दोस्तों, फिल्म तीसरी मंजिल का ये गाना हमने निकाल कर आप लोग के सुनाया है, और इसमें काम किया है शमी कपूर जी और हेलन जी, और गाना को गाया है भाई आशा मोहम्मद रफी जी और आशा भोसले। दोस्तों हम चलते हैं अगला गाना का ओर, वो है मेरी हमसफर लता जी और मुकेश जी की ओर हम चलते हैं, और इसमें ये गाना भी एक बहुत पुराना फिल्म है भाई, और आप लोग को हम सुनाते हैं मेरे हमसफर फ्रॉम लता मुकेश जी।

मेरे हम सफर हो मेरी हम सफर, लगता अमोगेश का ये गाना हमने आप लोग के लिए चला दिया है हमारे सुनने वालों। उसके बाद हम चलते हैं मेरे भू मेरे महबूब कयामत होगी, फिल्म के नाम है मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, नेहा इन फिर का ये गाना हम आपके लिए चलाते हैं।

मेरे महबूब कयामत होगी, मिस्टर एक्स बम्बई 1964 किशोर जी आप लोग की सुनाए हैं। और किशोर ने अगर महबूब के बारे में सुनाते हैं तो क्यों नहीं मुकेश और लता की ओर हम बढ़ते हैं, जो भी महबूब मेरे के गाना है, पत्थर की सनम 1964 जिसमें मनोज कुमार ने काम किया है दोस्तों।

0: फिल्म पत्थर का सनम, पत्थर के सनम 1967 गाना को हमने निकाला है, जिसमें मनोज कुमार ने काम किए हैं और मुकेश और लता जी इस गाना को और गाया है दोस्तों। और आगे हम चलते हैं, एक दो और मुकेश के गाना हो जाए, फिल्म यादगार की ओर हम बढ़ते हैं। हमारे प्यारे सुनने वालों,
1: किसी ने आवाज दी और कहा कि मैं भी साथ चलूंगी, तो कदम साथ चले, टेढ़े रास्तों पे साथी का साथ छूट गया, साथी लौट जा, मेरा जीवन तपते हुए रेगिस्तान समान है, मेरा पथ बहुत कठिन है, बहुत टेढ़ा है।

जिसे पद पे चला उस पद पे मुझे मुझे लता जी फिल्म के नाम है यादगांठ से इस गाना को हमने निकाल दिया है। हमारे प्यारे सुनने वालों, हम अगला गाना की ओर चलते हैं। मैं जिस दिन बुला दूंगी तेरे प्यार उस दिन क्या होगा, लता और अमित कुमार का ये गाया हुआ ये नंबर हम चलाते हैं।

भाई जिस दिन भुला दूंगी तेरे प्यार उस दिन ये आंखें क्या होगा सुनने वालों आपने खुद ही सुना है। हम चलते हैं ये है दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में शमाई है और ये फिल्म ये मुकेश जी ये गाना को आपको सुनाएंगे। मुकेश जी का ये गाना है।

दुनिया बनाने वाले क्या तेरी मन में समाई और ये दुनिया काहे को बनाई। मुकेश जी हम जाते हैं और होल्डर बर्मन के साथ में और जब हम जमा होगी फिल्म बेताब का ये गाना नेहत इंद्रियन तख्त का ये सॉन्ग है।

और दोस्तों क्या क्या और क्या क्या, आज हम आप लोग को कुछ नया और पुराने गीतों से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे दोस्तों। और हम चलते हैं अगला गीत की ओर। ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा एक गीत है जो नैतिल गई लता जी और उदित नारायण को गाया हुआ गीत है। इस फिल्म का नाम है वीर जरा, शाहरुख खान और प्रीति सिंधा का ये गीत आप लोग सुना जाए।

देश है मेरा और ऐसा देश है तेरा। जितने लोग दुनिया पे है हमारे प्यारे सुनने वालों, अपना देश सबके प्यारा होता है। चाहे आप भारत में हो या सूरीनाम में हो या पाकिस्तान में हो या जहां भी हो, अपना देश सबका प्यारा है। चाहे वो देश आपका जैसा भी हो, लेकिन तुम्हारा अपना ही देश है। और चलते हैं हम और आगे को, सातो जन्म में तेरा ही रहेगे। फिल्म के नाम है दिल वाला। कुमार शानू और अलका याग्निक इस गीत को गाते हैं।

सुनने वालों, सातों जन्म तक हम तेरे रहेंगे, ये क्या मुमकिन है? सात जन्म तक किसके साथ रहे? एक जन्म में भैया कहीं कहीं उल्टा सीधा हो जा है, सात जन्म में भला क्या होगा? सोचो तो, हम चलते हैं एक गीत की ओर। औ है खलनायक, खलनायक की ओर, और पलकी में होगे सवार, पलकी में होगे सवार। आओ सुना जाए।

बस पालकी में होके और सवार चलिए। कल का यानी फिल्म का नाम है खलनायक, जिस फिल्म में माधुरी दीक्षित संजय दत्त ने काम किया है और गीत को गाया है अलका याग्निक। और हमारे प्यारे सुनने वालों, हमारे दोस्तों, यहाँ से प्यार भरी गीतों का बाहर प्रोग्राम हम चलाते हैं। अगर जो आप किसी के ऊपर दीवाना हो गया है, अगर जो किसी के ऊपर आप दीवाना या दीवाना हो गया है, दिल दे चुका है, तो ये गीत आपको जरूर सुनना चाहिए। आओ देखो क्या है।

और ऐसी दीवानी और तेरा नाम हमने लिख दिया अलका याग्निक और विनोद राठौड़ ऋषि कपूर देविया भारती का ये फिल्म है ऐसा दीवानी। फिल्म का नाम है दीवाना। और हमारे प्यारे सुनने वालों, आज हम आज कुमार शानू के गीत भी आप लोग को सुनाएंगे और वो है ये चांद कोई दीवाना है, ये चांद कोई दीवाना है, ये भी कुमार शानू और अलका ने इस गीत को गाया है।

चांद कोई दीवाना है और ये चांद कोई दीवाना है। छुपा रुस्तम फिल्म का नाम है और इस गीत को हमने अपने प्यारे लोगों के लिए चला दिया है। मोहब्बत भरी गीतों से आज हम आप लोग को फिर कुछ मनोरंजन को आप प्राप्त करेंगे। और हम चलते हैं, कोई पागल प्रेमी होता है भैया, कोई श्रेक होता है और कोई पागल होता है। कविता कृष्णमूर्ति का और सबीर कुमार का यह गीत है जिस फिल्म में गोविंदा ने काम किया है और दिव्या भारती ने। और इस गीत को बोल है तू पागल प्रेमी और आवारा।

दोस्तों, और ये गीत क्या होगा दोस्तों? ये कुछ प्यार भरी गीत है और ये गीत है झुकी झुकी नजरों तेरी कमाल। झुकी झुकी नजरों तेरी कमाल की ओर हम जाते हैं।

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का प्रोग्राम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुन है द प्लस रेडियो पर नतिलक उक्त बलैस्त्रिफिया इंटरनेट के लहर द्वारा फाउन FM.NL पर यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हमारे फूल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर्स जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम। अनतिलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाई से जरूरी खबरें, या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में, या तो आप एक और खानी साथ और हो एक फिनमेंट और साथ और, या तो और गामान हो सकते हैं और गावुमन भी हो सकते हैं, जो भी आप ऑर्गेनाइज करते हैं, या तो अपने व्यापारी के बारे में ज़रूर कॉमर्शियल बनवाकर और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ज़रूर ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो। किफायत सस्ते दाम, सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश है और मात पर हम लोग बनाकर बंधु, जितने बार आप चाहेंगे उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप सभी से यही कहते आ रहा हूँ यारो कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा यारो। आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें एजेंस कंतूर उर फन मांडाग टॉट फ्राइडाग फन 9 टॉट 5 ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। स्टूडियो का तार का नंबर 07-362-2077, या तो दफ्तर का तार का नंबर 07-365-2047 पर आप तार करें। जो भी रेडियो का काम हो, डेंक ऑन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। इसी तरह हम लोगों के बारे में रिक्लाम बनाते रहना हमारे प्रिय सुनने वालों, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। और इसके लिए हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप है तो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो भी रहेगा। पेंटिनो खिलित फन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और ओ को भी बनाए। सभी जानकारी इसके बारे में बैलेटेरेंस कंतोर इरफान मांडाग टॉट फ्राइडाग अब द फॉलोइंग टेलीफोन नंबर्स 07-365-2047 कंतोर पर फन 9 टॉट 5, या तो आप तार करें op 070-362-2077 Studio Qatar का नंबर है। द्वारा के मुताबिक एक ही दम बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम के और हमारे प्रिय श्रोताओं, और कुछ सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक आप सुनेंगे। मशहूर गाने वाला हमारे हॉलैंडेस का, जो कुछ दिन हुए हैं हम लोगों को छोड़ के ऊपर वाले के पास चले गए हैं, मैस्ट्रो शहीद वाहिद हुसैन के ब्यूटीफुल आवाज़ में मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले।

0: सुंदर बयान मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले बाय मैस्ट्रो शहीद वाहिद हुसैन। अगला बयान एक और महान गायक हमारे हॉलैंडिस का, बोर्न इन पाकिस्तान, और कितने शोस दिए वो हमारे सुरिनाम देश में कि रोजाना लोग रेडियो पे इनके नगमे चलाते रहते हैं। है हेल पॉपुलर और नॉक स्टेट्स इन सुरिनाम हाउटमैन हैम दागलिक्स इन लीव मिट सेम प्रखतग स्टेम वर्सुक आन कॉलिक स्वान मै दी दैट ओक मोगे डून। इक ड्राइ वाक नेमर्स फन हैम वंट मेरे तो ये जिगड़ी दोस्त था, दिल के करीब भी था। नरीम खान सुन सुन पुम पुम आओ नाचो एन अंदर स्टाइल फन देस माएस्ट्रो
1: हिंदुस्तान। आओ नाचो और झूमो तू है।

क्या बात है, वाह वाह, शाबाश शाबाश, महान गायक हमारे हॉलैंडिस का द ग्रेट नदीम खान फ्रॉम पाकिस्तान, और जो अभी तक बहुत ही पॉपुलर है हमारे सूरीनाम देश में। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं, एक और मशहूर गायक हमारे हॉलैंडिस का जन्म तो हुआ है भारत देश में, शेखर कुमार जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर चटनी आप सुनेंगे कि प्रीतम प्यारे तू कहाँ बसत हो, अपसाइन शेखर कुमार स्टाइल।

वर्ष मशहूर गायक हमारे ऑल इंडीज का दिग्गज शेखर कुमार जी। सुनने के जा रहे एक और मशहूर गायक हॉलैंडिस का, आल्सो बोर्न इन पाकिस्तान और कितने सालों से गा रहा है मेरे ख्याल से फनफ 1983 तक हेडन मैस्ट्रो बॉबी जेकब जिंदगी का सफर।

अति सुंदर दिल को छू लिया ये नगमा जो मैस्टर बॉबी याकब जी ने हम लोगों को सुनाया। क्या गला है और क्या गाता है। अगला बयान सुनाकर जा रहे हैं सुरिनाम देश का मशहूर गाने वाले दो निशा मदारन और किंग कॉलोनी मिलके सुनाते हैं आप सभी को खतरनाक।

0: बेटिया
1: एकदम शाबाश शाबाश शाबाश। मशहूर गायक हमारे सुरिनाम देश का मैस्त्रो प्रशांत राम जतन जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। म्यूजिक बाय द जूनियर्स फ्रॉम सुरिनाम। मशहूर गाने वाली हमारे हॉलैंड देश का रोटरडैम शहर का द नाइटिंगेल संगीता भगेलू जी के ब्यूटीफुल सॉन्ग हंसी बन गए।

Fuzong, Hollandaise Rotterdam शहर का The Nightingale, संगीता भगेलू जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। अगला बयान आप सुनेंगे सुरेन भगवान दीन के आवाज में, यानी मेरा ही आवाज में, दरा हेमंत कुमार जी का ये कॉफ़िड सॉन्ग फूलों के हार, म्यूजिक बाय माएस्ट्रो ज्वाला।

का प्यार सुरेन भगवान दीन यानी मेरे ही आवाज में ये कॉफरेट सॉन्ग आप सुना। म्यूजिक कंपोज्ड एंड अरेंज बाय माय एस्ट्रो ज्वाला। तुम्हारे विप्रिय श्रोताओं, अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। आप ही का तो ये आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। ब्रेक के बाद मिलता हूँ यारो, आप भी जाइए, कुछ खाइए, कुछ पीजिए और साथ ही साथ प्रोग्राम को जरूर सुनते रहना, मजे लेते रहना। आफ्टर द ब्रेक, कहीं जाना मत यार।

मुस्कुरा लो, महफिले सजा लो, हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत। तो हमारे साथियों, आज का इस हसीन प्रोग्राम का शुरुआत मैं करने वाला हूँ हमारे सूरीनाम देश का एक महान गायक और मेरे ख्याल से एक अति सुंदर आवाज का मालिक, उस्तादों का उस्ताद, इंटरनेशनल कलाकार, हमारे सूरीनाम देश का द वन एंड ओनली मैस्ट्रो रॉबी उदितराम जी के ये कुछ लाइव सॉन्ग्स लगा है जो मैं आप सभी को साप्ताहिक सुनाने वाला हूँ। मिलके सुनते हैं मैस्ट्रो रॉबी उदितराम जी।

क्या बात है, वाह वाह, महान गायक, जबरदस्त गायक हमारे सूरीनाम देश का इंटरनेशनल कलाकार उस्तादों का उस्ताद रॉबी उदित राम जी। अगला बयान सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को हॉलैंडीज का द किंग ऑफ बैठक गाना। कुछ सालों पहले ये नौजवान कलाकार को ये टाइटल हमारे यहाँ के संगीतकारों ने दिया है, द वन एंड ओनली संदीप बदलू जी, अब ना होइए जवान।

Shabash, shabash, shabash, the king of bite, Ghana from Holland, Ustad ook Ustad, Sandeep Badlu, ke beautiful awaz me, ye ati sundar bayan aap shrotaon ne suna aaj ke is hazeen program mein jo aap shrotaon ke samne live broadcast ho raha hai Eden Hampshire se. अगला बयान एक और महान जबरदस्त गायक फ्रॉम द 70s 80s उस्तादों का उस्ताद देसी रघु सिंह सुनाते हैं मजेदार सॉन्ग है भैया तेरी पतली कमरिया क्या बात है एंजॉय

गायक हमारे सुरीनाम देश हॉलैंडिस का फ्रॉम द 70s 80s उस्तादों का उस्ताद द ग्रेट देसी रघु सिंह जी फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है हमारे प्रिय श्रोताओं जो तोर से आप सरनामी संगीत सुन रहे हैं। अगला बयान एक और जबरदस्त गायक फ्रॉम द 70s 80s मैस्ट्रो ध्रुव ननकू जी सुनाते हैं पतर पतर

शाबाश शाबाश, जबरदस्त गायक फ्रॉम द 70s 80s, उस्ताद ध्रुव ननकू जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने श्रवण किए। अगला बयान द चटनी क्वीन एंड द बैठक गाना क्वीन फ्रॉम सुरीनाम, जबरदस्त गाने वाली मोतीमाला भोला सिंह, और वो सुनाती है नई झुलनी का।

शाबाश शाबाश शाबाश जबरदस्त गायक हमारे सुरीनाम देश हॉलैंड देश का डीआर 70-80 उस्ताद टी सनातन जी फ्रॉम निकेरी। एक और मशहूर गाने वाली हमारे सुरीनाम देश का डीआर 70-80 चंद्रवती कन्हाई जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनेंगे कुछ बुढ़ा और कुछ मेहररुवन के बारे में बुढ़ा के।

वाह वाह क्या बात है, ब्यूटीफुल सॉन्ग सुना ये आप सभी को। मशहूर गाने वाली सुरीनाम देश के चंद्रवती कंधार 70-80। और जबरदस्त गायक हमारे सुरीनाम देश का, ओक बोर इन हेत डिस्ट्रिक्ट निकेरी, उस्ताद का उस्ताद और बैठक गाना का महा महा गुरु आचार्य श्री सत्यानंद रेखा जी। और वो सुनाते हैं अपने ही खबोरत स्तत निकेरी के बाजार के बारे में।

महान गायक हमारे सुरीनाम देश हॉलैंड देश का उस्तादों का उस्ताद और बैठक गाना का महागुरु आचार्य श्री सत्यानंत रेखा जी के ब्यूटीफुल मधुर आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। प्रिय श्रोताओं, अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद में कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा, तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना। ब्रेक के बाद मिलता हूं यारो, कहीं जाना मत।

लो मुस्कुरा लो, महफिले सजा लो, हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत। तो हमारे प्रिय प्रिय सज्जनों, खास करके हमारे सरनामी संगीत और बैठक गाना और कुछ अलग किस्म के सॉन्ग्स, पॉप म्यूजिक फ्रॉम सुरीनाम अगर आप पसंद करते हैं तो रेडियो को या करीब जाकर आप रेडियो के पास बैठ जाइए। एक बहुत ही जबरदस्त कलाकार हमारे सुरीनाम देश का था, जो बहुत ही कम उम्र में हम लोगों को छोड़ के भगवान को प्यारे हो गए थे और बहुत ही जबरदस्त आवाज़ और गला का मालिक था। बचपन से संगीत से बहुत प्यार करता था क्योंकि उनके पूरी फैमिली संगीत के दुनिया में हमारे सुरीनाम देश में एक्टिव था। जैसे उनका पूज्य पिताजी श्रीमान जीन प्रसाद उदित राम जी, बड़का भाई श्रीमान जगदीश उदित राम जी और बाद में उसका छोटा भाई जॉन उदित राम। आजकल तो उन ये महान परिवार का एक और छोटा सा सदस्य है, खास करके वो भी महफिल में उतर चुका है और वो है वीरेश उदित राम। मैं बात कर रहा हूँ उस्तादों का उस्ताद और एक बैठक गाना सेमी क्लासिकल म्यूजिक का एक महागुरु उस्तादों का उस्ताद श्री रॉबी उदित राम जी के मधुर आवाज़ में आज के इस हसीन प्रोग्राम का शुरुआत मैं करने वाला हूँ और वो सुनाएंगे आप कुछ को हमारे ख्याल से कुछ आँखियों के बारे में। तो मिलके सुनते हैं जबरदस्त गायक हमारे सुरीनाम देश का, जिसपे मैं ना से गर्व है और होना भी चाहिए, डगड़ेत रॉबी उदित राम। वी गोना मिस हिम फॉरएवर।

शाबाश शाबाश उस तारों का उस्ताद, महान गायक हमारे सुरीनाम देश का और एक जबरदस्त बैठक गाना का महागुरु डिग्रेट रॉबी उदितराम जी। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं, एक और जबरदस्त गायक हमारे सुरीनाम देश हॉलैंड देश का, वो भी एक म्यूजिक खानदान से यानी म्यूजिक फैमिली से बिलोंग करता है, शंकर चंद्र भोस, जबरदस्त ढोलक प्लेयर और बैठक गाना का एक जबरदस्त गुरु, और वो सुनाते हैं आप सभी को अब तो बहन लागे ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशल हमारे सरनामी संगीत के लॉफर्स के लिए।

शाबाश शाबाश जबरदस्त गायक ढोलक प्लेयर उस्तादों का उस्ताद शंकर चंद्र बोस जी के ब्यूटीफुल आवाज में जी सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। बोले आने बोले ना अम रैया, ये कह रही है उस्तादिन श्रीमती बिजावती चैतू।

एकदम शाबाश शाबाश शाबाश। जबरदस्त गाने वाली हमारे सुरीनाम देश हॉलैंडीज का बैठक गाना का उस्तादीन श्रीमती विद्यावती चैतू। गौर महान गायक हमारे सुरीनाम देश का द लेजेंड फ्रॉम

सूरीनाम अगर बैठक गाना के क्षेत्रों में हम लोग बात करें तो उस्तादों का उस्ताद महान महा महा महा बैठक गाना का गुरु और उस्तादों का उस्ताद पंडित श्री राम प्रसाद राम खेलावन जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप ये अति सुंदर बयान को सुनिए।

महान गायक द लेजेंड फ्रॉम सुरीनाम पंडित राम प्रसाद राम खेलावन जी। पावन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, जोर तोर से आप सरनामी संगीत सुन रहे हैं। पहला अध्याय का हमेशा की तरह बैठक गाना। एक और महान गायक हमारे सुरीनाम देश हॉलैंडिस का और जबरदस्त बैठक गाना का महा महा गुरु उस्तादों का उस्ताद श्री रामदेव चैतू का द बेस्ट सॉन्ग एवर हो प्रीतम प्यारे।

का उस्ताद महान गायक हमारे सूरीनाम देश का चैंपियन सिंगर्स द वन एंड ओनली द ग्रेट श्री रामदेव चैतू जी। तो हमारे भी प्रिय श्रोताओं, वक्त हो गया है ना कुछ ज्ञान की बातें हो जाए। पुराने जमाने के और इस जमाने के कुछ विद्वानों ने, पढ़े लिखे लोगों और कुछ मशहूर मशहूर लोगों ने मनुष्य के बारे में अति सुंदर सुंदर ज्ञान से भरी हुई बातें लिखे हैं, जो मैं आप श्रोताओं के साथ बांटना चाहता हूँ। यारो, यही आशा उम्मीद लेकर कि इन बातों से जरूर कुछ ना कुछ तो हम लोग सीखेंगे। तो जरा गौर फरमाएं। अर्ज किया श्री गेरहार्ड रीफ, नीदरलैंड स्क्राइवर एंड डिक्टर 1923 tot 2006। और गेरहार्ड रीफ ने कहा है हम लोगों के बारे में यारो कि अस इक म द वेदर गेबोर्ते गॉड्स फोरस्टेल दन सीन इक दी नीट इन द मेंस। हेट सौ इन एन लम कुनन सैन, मार इक विंड एन एजल लीवर। वॉट एन वर्गलाइकिंग सेग। आगे में कहा है श्री जेम फीबिग, अमेरिकांस कॉलमनिस्ट ओक पेयर्स फ्रॉम जेम बर्लिन। और जेम फीबिग ने कहा है मनुष्य के बारे में आरो कि अल्स यू मेट वोल्डूनिंग ऑप यू लेवन तरुग ब्लिक्ट बसेट यू एन फन द कॉस्टबारस्ट गावन फन द मेंस एन सेलेक्टिव गेहुगन। Atheïsme is meer in de lip dan in het hart van de mens. Zeker hij schreef Francis Bacon, Engels filosoof en staatsman, 1961-1626. Lao Tse, Chinees filosoof, leefde rond 2600 voor Christus. Ja, maar het is heel oud hoor. Jee, de deugdzame mens begeeft zich niet in redetwisten. En wie met argumenten redetwist, is niet deugdzaam. Je kan hij, Chinees filosoof Lao Tse. Alfonso de Lamartine, Frans dichter, staatsman en geschiedkundige. 1790 tot 1869. Our Alphonse de Lamartine kaha hai manushya ki bare mein aro ki the mens is een gevallen god die zich de hemel herinnert. Friedrich Nietzsche, Duits dichter en filosoof. De mens is een koord geknoopt tussen dier en übermens, een koord boven de afgrond. Alfred de Musset, Frans schrijver, 1810-1857. De mens is een leerling, die smart zijn meester, en niemand kent zichzelf voordat hij heeft geleden. Plato, Grieks filosoof, 447 tot 447 tot voor Christus. Al Plato neke ha hei menusje kibarmiaruki. De mens is een speeltuig van God, door hem bedacht. Boris Pasternak, Russisch schrijver en Nobelprijswinnaar literatuur 1958. Leefde van 1890 tot 1960. De mens is geboren om te leven, niet om zich op het leven voor te bereiden. De laatste van vandaag, Kahai Albert Camus, Frans schrijver, essayist en Nobelprijs literatuur 1956, leefde van 1913 tot 1960. Albert Camus, ne kahai ham logo yani manushya ke bare mein. De mens is uit het hout gesneden, waarvan men brandstapels maakt. तो हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, अभी आप कुछ कहावटें, कुछ उदाहरण सुना जो मनुष्य के बारे में जाता है। यू हैव नॉट कुन लुइस्टर नान पार सेर लेर रैक सिटात दी ओवर द मेंस हैड किंग यशो मिल। लेकिन इन बातों को मैं आप श्रोताओं को सुनाया कि इन बातों से कुछ ना कुछ तो हम लोग जरूर सीखते रहेंगे। तो अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं। एक और नौजवान कलाकार हमारे हॉलैंड देश एम्स्टर्डम शहर का
मशहूर परिवार से बिलोंग करता है, वरुण नंदा के परिवार है, और ये है विशाल नंदा, ढोल पे है वरुण नंदा, और विशाल सुनाता है आप सभी को चोरी चोरी।

लाइव रिकॉर्डिंग आप श्रोताओं ने सुना चोरी चोरी फ्रॉम द बेलमर हाइस फंड फैमिली नंदा वरुण नंदा और विशाल नंदा, ये अति सुंदर बयान ने लाइव आप श्रोताओं के समा में पेश किया। अगला बयान जरा दिल थाम के बैठिए, अब आ रहा है आप श्रोताओं की सेवा में हमारे हॉलैंडिस डेन हाक्शर का द लायन ऑफ बैठक गाना। उस्तादों का उस्ताद श्री देवेंद्र शिवनाथ जी अपने जवानी के बारे में वो कुछ सुनाने वाला है।

Shabash, shabash, the Lion of Beit Ghana from Den Haag, Holland. जबरदस्त गायक हमारे बैठ गाना के. और अगला बयान देखता हूँ वक्त, तो ये साथ ही साथ आखिरी बयान है आज के इस अति सुंदर प्रोग्राम जो आप सुन रहे हैं खास करके फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से. और वो सुनाने वाले हैं पूज्य पिताजी को, तो अभी आप सुन चुके हैं. ये शंकर चंद्र बोस जी का सुपुत्री है प्रमीला चंद्र बोस, दिल डड़े

शाबाश शाबाश, मशहूर गाने वाली हमारे हॉलैंडेस रोटरडैम शहर का डेग्रेट प्रमीला चंद्र बोस जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये थी सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। तो हमारे प्रिय प्रिय सज्जनों, यहीं तक था आज का ये सरनामी संगीत का प्रोग्राम, पहला अध्याय का जो समाप्त होने को आया। अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। आफ्टर द ब्रेक।

अभी आप सुन रहे थे एक बैठक गाना मैशो द टाइगर्स, यानी इस ग्रुप का नाम है द टाइगर्स। हरीश सुखदेव आपको सुनाने वाले हैं एक और मैशो। चलिए मिलकर सुनते हैं।

हरीश सुखदेव जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे एक मैशअप सुनने वालों। सोनिया सिंह आ रहे हैं प्रोग्राम में गिलबा का ग्याल।

सोनिया सिंह की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे गिलबा का ख्याल। लीला एम आ रहे हैं प्रोग्राम में सुनने वालों, और लीला एम जी आपको क्या सुनाने वाले हैं, अब चोलियाँ भीजे।

अभी आप सुन रहे थे अब चोलिया भीजे पसीने बनवारी, लीला एम आपको सुनाने वाले थे। मलेशा शिवपॉल आ रहे हैं प्रोग्राम में साइड चेक।

अभी आप सुन रहे थे मलेशा शिपोह की आवाज में साइड चेक रसिका दीनदयाल आ रहे हैं प्रोग्राम में बोले बोले हिरनवा।

बोले बोले हिरनवा हमको न मार, हमको न मारो जंगलवा में, रसिका दीनदयाल आपको सुनाने वाले थे। प्रोग्राम को हम आगे में जारी करने वाले हैं। सुनने वालों, पृथ्वी आ रहे हैं प्रोग्राम में, श्याम सुंदर।

आप सुन रहे थे श्याम सुंदर पृथ्वी की आवाज़ में केनेथ सालिक आपको सुनाने वाले हैं राधिका वायुली वेंगो।

अभी आप सुन रहे थे काली तेरी चोटी है परांदा तेरा लाल नी फ्रॉम द मूवी बाहर आने तक। इसी फिल्म से हमने ये गीत पेश किए हैं आप सभी के वास्ते। और जरा सा हम देखें, जी हाँ, लोग कहते हैं टाइम विल हील एवरीथिंग, लोग कहते हैं टाइम विल हील एवरीथिंग, गलत कहते हैं। कुछ गम ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त भी नहीं भर सकता। तू तक तू तक तू तक तूतिया आई लव यू फ्रॉम द मूवी घर का चिराग।

अभी आप सुन रहे थे तूतक तूतक तूतक तूतिया, आई लव यू, और प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं। मैंने तुझे देखा है कहीं पहले, याद आता नहीं है कब कहाँ। फ्रॉम द मूवी मीठा जहर से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। आपको सुनाने वाले हैं कंचन और नितिन मुकेश जी।

अभी आप सुन रहे थे मैंने तुझे देखा है कहीं पहले, नितिन मुकेश के साथ में कंचन जी आप सभी को सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी मीठा शहर से हमने पेश किए हैं सुन ले मेरी लैला, यानी फिल्म का नाम है सुन मेरे लैला, और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं ओ विकी आई लव यू।

अभी आप सुन रहे थे ओ विकी आई लव यू फ्रॉम द मूवी सुन मेरे लैला से हमने पेश किए हैं। क्या आसमान गिर जाएगा दो चार घूंट हम पी ले तो, फ्रॉम द मूवी मीठा जहर से हम पेश करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी मीठा जहर से, क्या आसमान गिर जाएगा जो चार घूट हम पी ले तो। एक बहुत सा सुंदर गीत हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते और आपको सुनाने वाले हैं आशा भोसले के साथ मोहम्मद रफ़ी जी। चलिए मिलकर सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे पूछो ना यार क्या हुआ। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो है बाबला और कंचन की आवाज़ में। बोलो बोलो कुछ तो बोलो।

0: बाबला और कंचन जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे। बोलो बोलो कुछ तो बोलो, और दहिया मोरी लेले लेले नंदलाल भी आप सुन रहे थे। अपनी नेकियां छुपाना आपकी सोच का इम्तिहान है, और दूसरों के गुनाह छुपाना आपके किरदार का इम्तिहान है। और ये गीत जो हम पेश करने वाले हैं फ्रॉम द मूवी सनम तेरी कसम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं, ख़ास करके उन सभी के वास्ते जिनका नाम निशा है। निशा
1: love you all.

श्री घोषाल और उदित नारायण आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी तुम सा नहीं देखा। वो हमसे खफा है, हम उनसे खफा है, इश्क छुपता नहीं छुपाने से। फ्रॉम द मूवी बेवफा से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते, और आपको सुनाने वाले हैं अभिजीत।

अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी बेवफा से हमने पेश किए हैं इश्क छुपता नहीं छुपाने से। एक और गीत हम पेश करेंगे फ्रॉम द मूवी तुम सा नहीं देखा, इसी फिल्म से आप सुनेंगे मैंने सोच लिया।

सुन रहे थे मैंने सोच लिया फ्रॉम द मूवी तुम सा नहीं देखा, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते हम प्यार है तुम्हारे फ्रॉम द मूवी। हाँ मैंने भी प्यार किया है कुमार सानू के साथ में अलका याग्निक आपको सुनाने वाले हैं।

बार शानू के साथ में अवका यज्ञिक आपको सुनाने वाले थे हम यार है तुम्हारे फ्रॉम द मूवी हाँ मैंने भी प्यार किया है। वो लड़की बहुत यार आती है फ्रॉम द मूवी कयामत से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। चलिए मिलकर सुनते हैं और आपको सुनाने वाले हैं कुमार शानू के साथ में अवका यज्ञिक।

वो लड़की बहुत याद आती है। अभी आप सुन रहे थे कुमार शानू के साथ में अलका याग्निक, आपको सुनाने वाले थे। भीड़ में तन्हाई में फ्रॉम द मूवी तुम सा नहीं देखा से आप सुनेंगे।

अभी आप सुन रहे थे भीड़ में तन्हाई में फ्रॉम द मूवी तुम सा नहीं देखा। इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं आपके प्यार में हम सवरने लगे। आपका यज्ञिक आपको सुनाने वाले हैं।

के प्यार में हम सवरने लगे अलका याग्निक आपको सुनाने वाले थे। दिल मेरा तोड़ दिया उसने पूरा क्यों मानू फ्रॉम द मूवी कसूर से हम पेश करते हैं।

0: मैं सिमरन बोल रही हूँ। अपना नाम और मैसेज एक बीप के बाद छोड़िए, मैं आपको कॉन्टेक्ट करूँगी। थैंक यू।
1: हेलो सिमरन, सिमरन मैं जानता हूँ तुम वहीं पर हो। सिमरन प्लीज पिक अप द फोन, प्लीज सिमरन प्लीज पिक अप द फोन। सिमरन प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, प्लीज सिमरन।

गोपाल का यज्ञ की आवाज में भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी कसूर से हमने पेश किए हैं दिल मेरा तोड़ दिया उसने बुरा क्यों मानू। क्रिमिनल है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए।

सुन रहे थे तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। इस बार हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते फ्रॉम द मूवीज, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते गली में आज जान निकला। अलका याग्निक आपको सुनाने वाले हैं।

तो आया तेरी याद गली में आज चांद निकला। अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक की आवाज में, फ्रॉम द मूवी सख्म से हमने पेश किए हैं

होता है सितारों का सफ़र, और सितारों का सफ़र में आज शाम के प्रोग्राम में बप्पी लहरी द ब्लिंग ब्लिंग सांगर म्यूजिक कंपोजर और साथ ही साथ म्यूजिक डायरेक्टर फिल्म प्रोड्यूसेंट भारत का आलोक्स अपरेश लहरी, उसका असली नाम यही है दोस्तों, 20 नवंबर 2023 तक में पैदा हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें लोग बपीता के नाम से जानते पहचानते हैं, पप्पी लहरी के नाम से लोग भी उन्हें पुकारते हैं। वो एक सांगर था, कंपोनिस्ट, प्रोड्यूसर, प्लात प्रोड्यूसर वगैरह वगैरह। पॉपुलर था 80 तक में बंगाल, तेलुगु और कन्नड़ा फिल्मों में। पिता अपेश लहरी और माँ बंसूरी लहरी, ये दोनों सांगर और म्यूजिकांत थे। बप्पी या मिस्टर ब्लिंग ब्लिंग माता पिता का एक ही लड़का था, एक ही बेटा था, और 19 साल के उम्र में इन्हें उनका मामा जी या मामू श्रीमान किशोर कुमार, मशहूर गायक किशोर कुमार, बॉम्बे ले गया। पहला हिंदी फिल्म जहां पर वो म्यूजिक कंपोज किया वो था नन्हा शिकारी जो नीखंटिंग ड्रियन सी फिल्म तक में बना, और पहला म्यूजिक कंपोजिशी उसका था तुम ही मेरा चंदा, ये गीत माइटी मुकेश ने गाया, और सुलोचना पंडित के साथ भी जाना कहा है ये सॉन्ग पेश किया। मैं आप सभी के सेवा में ये सॉन्ग पेश करता हूँ, बप्पी लहरी एंड सुलोचना पंडित।

King of Disco, Disco King, Bappita या बप्पी लहरी, मिथुन को बहुत से मदद किया फिल्मों में दोस्तों। बात यह है कि मिथुन का बीबी योगिता बाली वो चला गया, नहीं नहीं, किशोर कुमार का बीबी योगिता बाली वो चला गया मिथुन के साथ, तो किशोर कुमार ने बंद कर दिया मिथुन के लिए गीत गाने को। तो बबीता ने मिथुन को बहुत से मदद किया। जब मिथुन तब पे आया था ये बबीता का कारण हुआ। और फिल्म डिस्को सिंगर डांसर आपको मालूम होगा दोस्तों, ये फिल्म आपने जरूर देखे होंगे। उस समय डिस्को का समय रहा और हर एक गीत जो डिस्को से चलते थे लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुनते थे। मैं पेश करूँगा डिस्को डांसर का सॉन्ग आई एम ए डिस्को डांसर, जिसका म्यूजिक डायरेक्टर पप्पी लहरी।

ब्लिंग ब्लिंग बप्पी लहड़ी का एक दूसरा गीत है, बम्बई से आया मेरे दोस्त आपकी खातिर फिल्म का नाम है, जिसमें विनोद खन्ना और रेखा ने काम किया, मिस्टर ब्लिंग ब्लिंग बप्पी लहड़ी के आवाज में।

मिस्टर ब्लिंग ब्लिंग बप्पी लहड़ी के घर पर इनकम टैक्स वाला छापा मारा दोस्तों, और उसका जितना सोना है सब इकट्ठा करके तौला तो लगभग 2 किलो का सोना उसके पास, लेकिन हकीकत में लोग कहता है कि बप्पी लहड़ी के पास और सोना है, लगभग 4 किलो का सोना उसके पास है। बप्पी लहड़ी मिस्टर बबीता फिल्म डिस्को डांसर का एक सॉन्ग है जिसमें बप्पी लहड़ी ने म्यूजिक डायरेक्ट किया। जिमी जिमी आजा आजा आजा।

फिल्म डिस्को डांसर का एक दूसरा सॉन्ग मैं चॉइस करके रखा हूँ। गायक है पप्पी लहरी और म्यूजिक भी डायरेक्ट किया है पप्पी लहरी। याद आ रहा है तेरा प्यार कहा हम कहा, पप्पी लहरी की आवाज़ में आप सुनेंगे।

की लहरी पपीरा के नाम से भी लोग जानते पहचानते थे मिस्टर ब्लिंग ब्लिंग। जब पप्पी जी कहीं लाइव शो पे जाते थे तो हमेशा सबसे बेस्ट सांगर या सांगरेस को जेबी में अपन गटे में से एक, माफ कीजिए मैंने कहा जेबी, अपन गटे में से एक चेन एक केटी निकाल कर और तोहफा देता था। ये काम करता था मिस्टर ब्लिंग ब्लिंग पपीता। पप्पी लहरी का एक दूसरा सॉन्ग है आशा के साथ, यार बिना चैन कहा रे।

फिर लहरी निगरी द्रीन तक तक बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का प्राइज पाया फिल्म शराबी में उसके बाद निकली थी इन्हें नहीं खन तक और तुए जैसे त्वारक में भी बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर हुआ पप्पी लहरी। अमित कुमार और एस जानकी के आवाज़ में आप गीत को सुनेंगे जिसका कंपोजर है, इस गीत का कंपोजर है मिस्टर ब्लिंग ब्लिंग।

सितारों का सफर आप सुन रहे बप्पी लहरी। बप्पी लहरी को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। उसके बप्पी लहरी का एक रिकॉर्ड भी उसके पास है, 12 सुपर हिट फिल्मों में म्यूजिक दिया जितेंद्रा का फिल्म में। नेहरी सेशन तक के बाद जब उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में उनका नाम आया, इसलिए कि 180 नंबर्स एक साल के बीच में 180 नंबर्स ये पेश किया। और दुख की बात यह है दोस्तों कि बप्पी लहरी का मृत्यु 15 फरवरी 2020 मुंबई महाराष्ट्र में हुआ।

सितारों का सफर यहां से समाप्त होता है। आप ही का हैप्पी स्टेशन फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ।

सोनी मेरी सोनी सोनी। एक दूसरा सॉन्ग जो मैं चॉइस करके रखा हूँ फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का सॉन्ग है दोस्तों। और ये गीत, ये फिल्म शूटिंग, इसका शूटिंग हुआ है हरियाणा, इंडिया का एक एक गांव है, एक शहर है हरियाणा। वहाँ पर शूटिंग के समय जब शाहरुख खान ने काजल शुरुआत किया इस गीत जो मैं पेश कर जा रहा हूँ, तुझे देखा तो ये जाना सनम, तो ये गीत का शूटिंग के समय वहाँ गांव के लोग, वहाँ के जो बसिंदा थे सब आकर घेर लिया और हल्ला मचाए, शोर मचाने लगा। तो जो वहाँ का फिल्म डायरेक्टर था उसको प्रॉब्लम था, वो ये शूटिंग नहीं कर सकता था। तो आमने सामने बैठा था फिरोज खान, मशहूर एक्टर फिरोज खान वहाँ शूटिंग के जगह पर भी बैठा था। तो ये उठ के गया है और ये हरियाणी, ये हरियाणा का लोग जो है उस सभी से हरियाणी भाषा में बात किया, सभी को भाई बनाया। तो जाकर शाहरुख खान और काजल ने ये गीत को प्लेबैक किया, तुझे देखा तो जाना सनम।

प्यार करे मुझसे, प्यार करे मुझसे इसे हार करे किसी और से, खुदा करे जिसे उसे हार करे वो भी प्यार करे किसी और से। आरंभ होता है क्या हो तेरे वाला दर भर गीत ब्रोकन हर सॉन्ग का प्रोग्राम। पहला दर भरा गीत जिन्हें हम भूलना चाहे, जिन्हें हम भूलना चाहे वो अक्सर याद आते हैं माइटी मुकेश की आवाज में।

खुशी, खुशी एक ऐसा एहसास है, खुशी एक ऐसा एहसास है जिसके हर किसी को तलाश है। गम एक ऐसा अनुभव है, गम एक ऐसा अनुभव है जो सबके पास है, पर जिंदगी, जिंदगी तो वो जीता जिसको खुद पर विश्वास है।

जब तुम पास थे तो हरदम यही सोचता था कि तेरी कदर नहीं करता। और आज जब तुम मेरे पास नहीं तो एहसास होती है कदर हमेशा से थी, मगर तुझे ना खोने के यकीन ने अंधा किया था।

कोई नहीं मेरा इस दुनिया में, कोई नहीं मेरे इस दुनिया में के बाद अब की बार तेरे दुनिया में दिल लगता नहीं, वापस बुला ले माइटी मुकेश।

0: क्या हुआ तेरे और दर भर गीत ब्रोकन हार्ट सॉन्ग का प्रोग्राम यहाँ से समाप्त होता है।
1: दिल की तरह से हाथ मिले हैं कैसे भला
0: फाहन हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चुने हर एक काम जो आपको रेडियो से कराना है कॉन्टेक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से 9 से 5 तक 3 से 5 2 2 फिर से 5 पर आप तार कर सकते हैं।

0: रहे ना रहे हम महका करेंगे। आरंभ होता है सितारों का सफर, और सितारों का सफर में आज के प्रोग्राम में अमरीश पुरी के बारे में कुछ बातचीत होगा।
1: सिर्फ दिल की जमीन है याद हमको।
0: अमरीश पुरी का जन्म 22 अक्टूबर 1928 को लाहौर पंजाब में हुआ। इनका असली नाम है अमरीश लाल सिंह पुरी। अमरीश पुरी एक बेस्ट विलियन एक्टर के अलावा अच्छे रोल भी करते थे। वो शेखर कपूर का की फिल्म हिंदी फिल्म मिस्टर इंडिया में मोगाम्बो के नाम से बहुत मशहूर हुई। ये फिल्म जो नीलकंठ सिंह ने तख्तक में बनी थी, और इसमें अनिल कपूर का होफ रोल था। अमरीश पुरी यानी शास्त्रक में इंडियन थिएटर्स में काम का शुरुआत किया। उस वक्त वो सचदेव और गिरीश कर्नाट के साथ भी काम करते थे। अमरीश पुरी एक वेस्टर्न फिल्म जो निकली फिल्म तख्तक में बना था, वो स्टीफन स्पीगलबर्ग का इंडियाना जोन्स एंड टेंपल ऑफ डून। इस फिल्म में अमरीश पुरी का नाम मोला राम था। अमरीश पुरी भी फिल्म बादल में काम किया। उस फिल्म का एक सॉन्ग मैं पेश करूंगा।

अमरीश पुरी। अमरीश पुरी के भाइयों भी एक्टर थे, जैसे चमन सिंह पुरी और मदन पुरी, और एक छोटा भाई जिनका नाम हरीश पुरी, और एक बड़ी बहन जिनका नाम थी चंद्रा कंटा। अमरीश पुरी शिमला के बीएम कॉलेज, जो हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ अपना पढ़ाई किया। अमरीश पुरी की शादी नहीं सीवन फेज तक में उर्मिला देवी के साथ हुई, और इन दोनों को एक बेटा और एक बेटी है। बेटे के नाम रजीफ और बेटी के नाम नम्रता। अमरीश पुरी बाद में बॉम्बे आया, जहाँ इनके भाइयों फिल्मों में काम करते थे, और ये भी उन्हीं के तरह भी फिल्म एक्टर बनना चाहता था। अमरीश पुरी एक स्क्रीन टेस्ट के बाद नौकरी किया स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में। उसी वक्त ये पृथ्वी थिएटर्स में एक नाटक में भाग लिया और संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड पाया। निगरिंग निगरन सीफन तक के बात है। अमरीश पुरी ने फिल्म साधना सरगम का और अमित कुमार का सॉन्ग है, और फिल्म सपना का एक सॉन्ग, दोस्तों एक ओल्ड सॉन्ग है, और इसमें नया भी मिलाया गया है। खुद सुनिए आप।

अमरीश पुरी, अमरीश पुरी जब 40 साल के थे तो अमरीश पुरी ने अनेक फिल्मों में एक्ट किया, जैसे हिंदी फिल्में, कनाडा, मराठी, हॉलीवुड, पंजाबी, मलयाली, तेलुगू और तमिल फिल्मों में भी अमरीश पुरी काम किया। अमरीश पुरी बॉलीवुड सिनेमा में लगभग 400 फिल्मों में काम किया। अमरीश पुरी रोजाना दोस्तों उसका एक काम था, लगभग 2 या 3 घंटे तक अपन आवाज़ का प्रैक्टिस करता था। उसका आवाज़ जो है आप जानते हैं अमरीश पुरी का एक अहला, एक अलहदा, एक अपर्त आवाज़ थे, और ये आवाज़ वो हमेशा रोकने के लिए 2 या 3 घंटे तक प्रैक्टिस उसने उफन करते थे। अमरीश पुरी इसे तो कई अवार्ड भी पाया। निजी आक्तन शास्त्रक में महाराष्ट्र स्टेट ड्रामा कॉरपोरेशन अवार्ड पाया, और भी और ज़्यादा अवार्ड अमरीश पुरी ने पाया। एक सॉन्ग के बाद मैं आपसे और अवार्ड का नाम लूँगा। फिल्म करण अर्जुन का सॉन्ग है जिसमें अमरीश पुरी जोर तोर से काम किया।

1979 तक में अमरीश पुरी थिएटर संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड पाया। उसके बाद 1986 तक में फिल्म फेयर सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड फिल्म मेरे जुंग में 1991 महाराष्ट्र स्टेट गौरव पुरस्कार अवार्ड पाया। 1990 में फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग अवार्ड स्टार स्क्रीन अवार्ड बेस्ट सपोर्टिंग फिल्म घातक में 1998 में फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का स्टार स्क्रीन अवार्ड पाया फिल्म विरासत में 1993 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फिल्म मुस्कुराहट में 1999 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड फिल्म गर्दिश में 1999 के बाद है जब फिल्म फेयर बेस्ट विलियन अवार्ड पाया फिल्म करण अर्जुन में 1999 में फिल्म फेयर बेस्ट विलियन अवार्ड फिल्म कोयला में उसके बाद 2002 में फिल्म फेयर बेस्ट विलियन अवार्ड फिल्म गद्दार एक प्रेम कथा। दुख के बात यह है दोस्तों कि अमरीश पुरी का मृत्यु 12 जनवरी 2005 को बॉम्बई महाराष्ट्र इंडिया में 72 साल के आयु में हुई। पत्नी इर्मिला देविकार और बेटी राजीव और नम्रता को पीछे छोड़कर चले गए। अमरीश पुरी दुनिया में नहीं है, लेकिन अमरीश पुरी का नाम जब फिल्मी दुनिया का नाम लिया जाएगा तो अमरीश पुरी का नाम भी बड़े गर्व से लिया जाएगा।

0: सुनो सुनो ए भाइयों और बहनों,
1: हाय हाय सुनो सुनो भाइयों बहनों,
0: सांबड़ो रे सांबड़ो ओ राघो बा ओ दोंडी बा, आई का ओ जरनल सिंह ओ जरनल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।

फन हंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतो निकलिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

0: में सुलगते हैं अरमान। एक बार फिर जगदीप सिंह के आवाज में दोस्तों आप सुनेंगे कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
1: प्रोपेयर से
0: क्लोज टू माय हार्ट का सिलेक्शन है।

सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ। अब की बार दोस्तों मैं चला जाता हूँ श्री नामदेश, वहां पर रहता है उस्ताद जॉनी बच्चू। और जॉनी बच्चू क्या फरमाएंगे, जिस दिन जिस दुनिया से नफरत मैंने खोजा है दोस्तों, और कई सिलेक्शन मैंने पाया है, और सभी सिलेक्शन में से मुझे ये गीत सबसे अच्छा लगा, तो मैं सोचता हूँ आप सभी से मैं ये गीत बांट लूँ जॉनी बच्चू के आवाज़ में।

वाह क्या आवाज है मिस्टर जॉनी बच्चू के आवाज में भी आप गीत को सुना रात कली। ये रात का कली कभी जो है जो वो कभी कभी सोने नहीं देते हैं, फिर भी ख्वाब में आए हैं।

रात्रि कली तो वादा किया है, एक बार फिर खाब में आने को दोस्तों आपको सिर्फ सोना पड़ेगा। रात्रि को आग बंद कर लेना तो रात कली जरूर आ जाएंगे आपके ख्वाब में। ये दिल का रिमिक्स है लेडी संजना एंड मिस्टर मुका।

फन हंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतो निकलिए तार कीजिए 9735 तक सेफ नफेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

0: van Hindustani Radio.
1: आवारा हूँ ये सुंदर सा इंस्ट्रूमेंटल आपके लिए। तुम हमसे बदलते हो, तुम हमसे बदलते हो तो तुमसे भी कोई बदलेगा, तुम हमसे बदलते हो तो तुमसे भी कोई बदलेगा। यही बदला होता है हर बदलने।

मौलवी साहब की आवाज़ में सुने, बोलो बोलो कुछ तो बोलो। इस बार सुनेंगे राही मिल गई राहों में।

फिर कोई पछताएगा। जागेंगे सोए सोए, सोचेंगे खोए खोए, जागेंगे सोए सोए,

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में फिल्म दिल देखे देखो, उसी मशहूर फिल्म से ये सुंदर सुंदर गीत आप सुन रहे हैं। मन में विश्वास और संदेह एक साथ नहीं रह सकते।

हो साथिया हो बेलिया सुना दी आपको लता जी और मोहम्मद रफ़ी जी ने। जब आपकी आवाज़ किसी को चुभने लगे तो तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे दो। जब आपकी आवाज़ किसी को चुभने लगे तो तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे दो। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको जोड़ते जोड़ते इंसान खुद टूट जाता है। किसी की नज़र ना लगे आपको, किसी की नज़र ना लगे, लगे तो बस लंबी उम्र की दुआ लगे आपको।

सफ़र छोटा ही सही, सफ़र सफ़र छोटा ही सही, मगर यादगार होना चाहिए। और रंग काला ही सही, मगर वफादार होना चाहिए।

फिल्म ब्रह्मचारी रफ़ी जी की आवाज़ में एक अच्छा इंसान बने, लेकिन इसे साबित करने के लिए अपना समय बर्बाद ना करें। एक अच्छा इंसान ज़रूर बने, पर इसे साबित करने के लिए अपना समय मत बर्बाद करना।

आशा भोसले की आवाज में फिल्म का नाम कारवां। हे ईश्वर, जो कुछ आपने दिया है, हे ईश्वर जो कुछ आपने दिया है, जो कुछ आपने नहीं दिया और जो कुछ देकर ले लिया है, उस हर बात के लिए आपका धन्यवाद। जो कुछ आपने दिया है वह आपकी कृपा, जो कुछ आपने नहीं दिया उसमें हमारी भलाई, देकर और जो कुछ ले लिया है

जी करता है बस सुनते ही रहे कि जब से तुम्हें देखा है आँखों में तुम ही तुम हो। रफ़ी और आशा भोसले जी ने सुना दी फिल्म का नाम घराना, और इस फिल्म में जो अपना किरदार निभाया है राजेंद्र कुमार जी और आशा पारेख। कभी कभी खुद की बड़ी याद आती है, कभी कभी खुद की अपने आप की बड़ी याद आती है कि क्या से क्या हो गए देखते देखते। जीवन में कभी ऐसा मोड़ आता है कि हम वाकई में रुक जाते हैं, थम जाते हैं, सोचते रहते हैं कि हम क्या थे और कहाँ आ गए। कभी कभी खुद की बड़ी याद आती है कि क्या से क्या हो गए देखते देखते। समय वक्त हमारे हाथ में नहीं है, देखते देखते हम बचपन से कब दीनार हो जाते हैं वो भी हमारे हाथ में नहीं है। और दीनार होने के लिए भी बड़ा सौभाग्य होता है, हर किसी को ये नसीब भी नहीं होता है। तो आप एक नसीब वाला है। सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, जीवन हंसते में खुशियाँ में बिताते रहे, हर एक पल का जरूर से

हमारी आवाज़ के सुनने वालों, प्यारे दोस्तों, भाई बहनों, यहाँ से हम आपको लेकर चलते हैं सुनने के लिए लता जी और रफी जी की आवाज़ में।

रही है सुनाए आपको लता और रफी जी एक बार फिर, और वही मशहूर फिल्म मैं चुप रहूंगी से निकाला गया ये सुंदर सा गीत। और सुनने वालों, आप हो जो गीत और संगीत के प्रेमी, तो यहाँ से फाउन हिंदुस्तानी आपके लिए ये सुंदर सुंदर सा गीत जो सिलेक्ट करके रखी है

कितना रोमांटिक, कितना प्यार भरे ये सुंदर सा गीत जो आपने सुने। जी चाहता है कि बस सुनते ही जाए, सुनते ही जाए, सुनते ही जाए, जी नहीं भरता ऐसे ही सदाबहार गीतों जो आपके लिए यहाँ से सिलेक्ट करके रखी गई है, आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल एकदम से तैयार करते। आप है संगीत और संगीत के प्रेमी, तो यहाँ से लेकर चलते हैं एक बार फिर ऐसे ही सुंदर गीत, और इस बार है मन्ना दे लता जी के साथ में।

सुनाए आपको मन्ना दे और साथ दे रही थी लता जी। बिल्कुल आपने सुने सही। आज ही जी लो, आज ही जी लो खुल कर यारो, आज ही जी लो खुल कर यारो, कौन जाने कल की क्या कहानी। हंसो मुस्कुराओ, हंसो मुस्कुराओ, फिर न होगी ये दिन सुहानी।

चंपा और सुनतारा, लता और किशोर जी ने सुनाए, फिल्म का नाम है अपना देश। जी हाँ, जीवन की कहानी प्यार से लिखते चलो। जी हाँ सुनने वालों, जीवन की कहानी प्यार से लिखते चलो, मीठे बोल बोलते रहो, रिश्ते नए बनाते चलो। जीवन की कहानी को रंगीन बनाते, सजाते और संवारते चलो। क्या लाए थे जो हम लेके जाएंगे।

जीवन के दो पहलू है। हाँ, जीवन है दो पहलू से बने हुए, जैसे रात और दिन, आज और कल। और कह रहा है कि मुझे नहीं मतलब कौन किसके साथ कैसा है, मुझे नहीं मतलब कौन किसके साथ कैसा है, जो मेरे साथ अच्छा है वो मेरे लिए अच्छा ही है।

जाने ना। लता जी से आपने सुने फिल्म का नाम इम्तिकान, इम्तिकान सुने वालों हाँ। इसमें हेलन भी अपना खूब कमाल की है।

0: खुशी एक एहसास है, खुशी एक एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश है। गम एक ऐसा अनुभव है, गम एक ऐसा अनुभव है जो सबके पास है। जी हाँ, गम एक ऐसा अनुभव है जो सबके पास है, मगर जिंदगी तो वो ही जीते हैं जिसको खुद पर खुद विश्वास है। बेस्ट रेडियो स्टेशन इन टाउन, हाँ सुनने वालों, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो जनता के नाम। अजो देन हाग न्यूटन स्ट्रीट नंबर 25 पर है। देन हाग न्यूटन स्ट्रीट 25 पर जो इनका स्थान है, Zoveel dingen komen vanzelf goed. Zorg dat je leeft. Denk er niet te veel na. Word niet ziek door jezelf te veroordelen. Verteer jezelf niet. De dingen die niet kunnen veranderen. Mensen niet kunnen veranderen. Je maakt jezelf kapot. Je dagen, je kansen, je leven, de mensen om je heen. Zoveel dingen komen vanzelf goed. Zorg dat je leeft.
1: Kom maar, ja.

यस मोनिका, ओ माय डार्लिंग, जिसका नाम मोनिका है तो ये गीत उनके लिए भी पेश किया गया है। साथ ही साथ जिसका नाम मोनिका भी नहीं है तो ये सुंदर सा गीत भी आपके लिए है जो यहाँ से नशर किया गया है। देखो तो फिल्म का नाम है कारवाने दिन एन सेफ तक, ये सदाबहार गीत जो आपके लिए पेश किया जाता है। शब्द शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द में एक नहीं हाथ नहीं, शब्द के नहीं हाथ नहीं पाँव, शब्द शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द के ना तो हाथ है ना तो पाँव, एक शब्द है औषधि और एक शब्द है घाव। बातों से लोगों को जी जीत सकते हैं और बातों से ही लोगों को भी घायल कर सकते हैं। ऐसा भी है कि तरवेल व दिंगन उइटस्टेलन, तरवेल व दिंगन उइटस्टेलन, गात इट लेवन फोरबाई। कुछ नहीं अर्चताल करना सुनने वालों, अगर हो सके तो आज ही कर दो। जो कहते कि जो कल करना है तो आज करो, जो आज करना तो अभी कर डालो, क्योंकि कल का पता किसी को नहीं। और ये भी आपको भी एक शक्ति भी देगा अगर आप ये कहेंगे कि हम कहते हैं कि हाउ देस सेन अल्टेट इन खदाख्तन, हाउ देस सेन अल्टेट इन खदाख्तन, एंड दैट सेन एक वेल है या एक वेल है एक कान है लुक्त में। ये एक चाबी है, पॉजिटिव चाबी है आपके वास्ते। अगर आप कहीं ऐसे है जहाँ पर आप कुछ करना चाहते हो और लुक नहीं होते, तो आप ये जरूर से कहना कि एक वेल है एक कान है लुक में। और इसके साथ सुनने वालों, हम आपको लेकर चलते हैं फिल्म शोले की तरफ।

महबूबा महबूबा सुनाए आपको, हम आपसे बता दें आर डे बर्मन, जी हाँ आर डे बर्मन ये गीत को गाए हैं और म्यूजिक भी डायरेक्ट तक की है आर डे बर्मन, जी हाँ सुनने वालों। और जैसे कहा कि फिल्म का नाम है शोले, शोले नेखा दी फैफन से फंतखिया, वही मशहूर वही हिट फिल्म

शादीशुदा घर, अनहुलक इस आस अनहाउस। हाँ, ऐसे फर्क लगाई कर सकते हो कि अनहुलक इस आस अनहाउस, तो आप इसका मतलब हम आपको बताएंगे। आस अनलम्प है नित मेर दूत, आपके घर में जो आप एक एक चिराग जो काम नहीं करते, जो नहीं जलते, असलम थैथनिक मेर दूत खायनित अब सुख नार अन्यो हाइस मार ये रिपारेर द लैंप। एक दो चार शब्द है मार इसमें कितना गहराई है। अनहुलक इस आस अन हाइस आस अन लैंप असलम थैथनिक मेर दूत खायनित अब सुख नार अन्यो हाइस मार ये रिपारेर द लैंप। संतोष मन दुनिया का सबसे बड़ा धन है। संतोष मन दुनिया का सबसे बड़ा धन है। आप सुनते हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो।

मुकेश जी ने हमके सुना दी कि तूने रात गवाई सोई के और दिवस गवाई जाग के। बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। और भरोसा एक रिश्ते की सबसे महंगी शर्त है। भरोसा, जी हाँ, भरोसा एक रिश्ता की सबसे महंगी शर्त है।

ये दुनिया नहीं जागीर, किसी के सुंदर सा गीत रफ़ी जी की आवाज़ में हमने सुने। सुने वालों, खूबसूरत है वो हाथ, खूबसूरत है वो हाथ जो किसी के लिए मुसीबत मुश्किल वक्त का सहारा बन जाए।

चाहे रो ना पाए उदित नारायण जी की आवाज़ में हमने सुने। फिल्म का नाम अनारी है सुनने वालों। जिंदगी में ज़्यादा टेंशन है, तनाव है, दबाव है, चिंताएं हैं और हमसे नहीं संभल रहा है, ये सब हमसे संभल नहीं रहा है, तो ये सब उनको दो ना। ये सब टेंशन, तनाव, दबाव जो है ये सब उनको दो ना, जो जिसने हमें ज़िंदगी दी है वो जब पूरी दुनिया संभाल रहा है तो ये भी संभाल लेगा।

जी हाँ, ये मोहम्मद रफ़ी जी के आवाज़ में हमने यहाँ से श्रवण की है सुनने वालों कि कल चमन था आज एक सहरा हुआ। फिल्म वक्त से निकल गया ये सुंदर सा गीत। जिंदगी पल पल बदलती है, ये तो सही है कि जिंदगी पल पल बदलती है, जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है। शिकवे कितने भी हो हर पल फिर भी हंसते रहना, क्योंकि ये जिंदगी जैसी भी है, क्योंकि ये जिंदगी जैसी भी है, बस एक ही बार मिलती है।

0: आज वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शै गुलाम, वक्त का हर शै फेराज।
1: जी हाँ, वक्त से दिन और रात फिल्म वक्त से निकाला गया। ये सुंदर सा गीत, हम क्या कहें, हम तो बेशब्द हो जाते हैं। ये गीत अगर आप सुने तो ये गीत में सभी बातें जो हमें जीवन में और आगे ले जा सकते हैं, अपना जीवन जो हम सुधार सकते हैं गीतों से, हम सुन सकते हैं और अपने जीवन में प्रयोग में ला सकते हैं। दिन बीत जाते हैं कहानी बनकर। जी हाँ मेरे सुनने वालों, दिन बीत जाते हैं कहानी बनकर, यादें रह जाती हैं निशानी बनकर, पर रिश्ते हमेशा रहते हैं। जी हाँ, रिश्ते हमेशा रहते हैं, कभी होठों की मुस्कान बनकर तो कभी आँखों की पानी बनकर।